सुप्रभात। मीडियम वेव 238.09 मीटर और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम आराधना की शुरुआत करते हैं समूह स्वर में देशगान से।

0: कार्यक्रम आराधना की शुरुआत में आपने सुना समूह स्वर में देशगान। प्रस्तुत है हरिओम शरण की आवाज में गणपति वंदना।
1: उपस्थित भक्त जनों, संगीत पीठ रसे जानते हैं, हरिओम शरण एक ऐसा नाम है करते झरनों सा संगीत।

कार्यक्रम विचार बिंदु। कार्यक्रम में आज का आलेख है जिम्मेदारी और कदाचार, संकलन एवं वाचन स्वर हैं गोपेश पांडे के। जिम्मेदारी और कदाचार, ये दोनों शब्द सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन जीवन, समाज और राष्ट्र की दिशा तय करने में इनका गहरा संबंध है। जिम्मेदारी का मतलब है किसी काम या कर्तव्य को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना। जब हम कोई कार्य स्वीकार करते हैं तो उसके अच्छे बुरे परिणामों के लिए भी हम उत्तरदायी होते हैं। यदि हम जिम्मेदारी के पहलुओं की बात करें तो इसका सबसे पहला पहलू है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यानी अपने जीवन, स्वास्थ्य और परिवार की देखभाल। इसका दूसरा पहलू है सामाजिक जिम्मेदारी, समाज में सहयोग और सद्भावना बनाए रखना। तीसरा पहलू है व्यवसायिक, यानी अपने कार्यक्षेत्र और संगठन के प्रति निष्ठा। इसका चौथा पहलू है नैतिक जिम्मेदारी, यानी सत्य, न्याय और ईमानदारी का पालन करना। और इसका आखिरी पहलू है कानूनी जिम्मेदारी, अर्थात देश के कानूनों का पालन करना। जिम्मेदारी निभाने से हमें व्यक्ति के

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री राम

Thank you.

0: ए हरिहरन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात में। सामयिक सुझाव का विषय संकर धान की खेती।
1: किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाने वाला राज्य है, जहाँ लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, जिसमें से 25 लाख हेक्टेयर उथली निचली भूमि वाले क्षेत्र हैं। यहाँ लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या अधिक है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व पंजाब धान के अच्छे उत्पादन की वजह से अग्रणी प्रदेशों में गिने जाते हैं। स्वपरागित छोटे पुष्पयुक्त धान के पौधों से और अधिक उत्पादन प्राप्त कर पाना एक कठिनतम कार्य था, परंतु इस कष्ट साध्य कार्य को पूरा करने की चुनौती चीन के वैज्ञानिक प्रोफेसर इवान लांगपिंग ने ली और संकर धान को जन्म दिया, जिसने चीन में धान के उत्पादन में एक नई क्रांति ला दी। किसान भाइयों, हम जाने कि संकर धान क्या है। तो संकर धान एक व्यापारिक धान ही है, जिसका बीज अनुवांशिकीय रूप से भिन्न दो पैतृकों के संकरण द्वारा तैयार किया जाता है। प्राप्त बीज को संकर बीज या F1 कहा जाता है। संकर धान की उपज क्षमता स्थानीय अति उत्तम अंतः प्रजाति किस्मों से 10-25% अधिक होती है। संकर धान से औसतन 7 टन प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है। संकर धान की उपज क्षमता का लाभ उठाने के लिए कृषकों को प्रत्येक वर्ष नया बीज खरीदने की आवश्यकता होती है। हमें संकर धान की आवश्यकता इन कारणों से होती है कि हरित क्रांति के युग के पश्चात उच्च उपज क्षमता वाली बोनी धान की किस्मों की उपज क्षमता में अनुवांशिकीय स्थिरता का आ जाना है। कम से कम भूमि में अधिक से अधिक धान की उपज प्राप्त करना, जनसंख्या वृद्धि के साथ धान की मांग का तेजी से बढ़ना, संकर धान से कृषकों को उपज में 10-25% तक का बढ़ोतरी होना और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संकर धान से अधिक उपज प्राप्त होना। किसान भाइयों, यदि सामान्य प्रजाति और संकर धान में अंतर की बात करें तो सामान्य प्रजाति में स्वपरागित यानी नर और मादा जनन अंग एक ही फूल में होते हैं। धान फसल की कटाई के बाद प्राप्त बीज को पुनः बोने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि संकर प्रजाति में संकर बनाने हेतु दो जनक पौधों की आवश्यकता होती है, एक नर जनक एवं एक मादा जनक पौधे की। कटाई के बाद प्राप्त बीज को खाने में तो उपयोग लाया जा सकता है, परंतु पुनः बोनी के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसमें संकर ओज में कमी आ जाती है। किसान भाइयों, प्रारंभ में जो संकर धान की किस्में विकसित की गई थी उनमें गुणवत्ता की कमी थी, परंतु वर्तमान में विकसित संकर धान किस्मों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ ने छोटे पतले दाने वाली सुगंधित किस्मों का ज़्यादा प्रचलन है, अतः इनके संकर बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। चावल के पकाने की गुणवत्ता सामान्यतः वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे कि मृदा की उर्वरता, सिंचाई क्रियाविधि, दूरी, रोपाई का समय, कटाई और भंडारण। किसान भाइयों, संकर धान की जो सस्य क्रियाएं हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। उर्वरक क्षमता बढ़ाने हेतु भूमि की उपयुक्त तैयारी जरूरी है। संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए। एक की बजाय 3 बार में उर्वरक का छिड़काव किया जाना चाहिए। अधिक नत्रजन के प्रति संकर धान की ज़्यादा उपज होती है। सिंचाई हेतु उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। बालियां निकलने से दूध भरने की अवस्था में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। किसान भाइयों, संकर धान की बुआई रोपा पद्धति से करने पर अधिक से अधिक उपज प्राप्त होती है। इस पद्धति में बीज की मात्रा कम लगती है। नर्सरी में बीज की देखभाल अच्छे तरीके से की जा सकती है। इस पद्धति में खरपतवारों का प्रकोप भी कम होता है। इस पद्धति से धान लगाने से जड़ों एवं कंसों का विकास अच्छा होता है। उर्वरक एवं कीटनाशकों के छिड़काव में आसानी होती है। किसान भाइयों, इसके लिए नर्सरी तैयार करते समय भी हमको सावधानी बरतनी चाहिए। खेतों को 3-4 बार अच्छी तरह जुताई करके अंत में पाटा चलाकर समतल

लेना चाहिए। एक हेक्टेयर के लिए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी पर्याप्त होती है। नर्सरी में क्यारियों की लंबाई आवश्यकतानुसार रखना चाहिए, लेकिन चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर तक रखना चाहिए। क्यारियों का निर्माण बुआई के 1 से 2 दिन पहले कर लेना चाहिए। क्यारियों को भूमि सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा पर रखना चाहिए। 2 क्यारियों के बीच में नाली होनी चाहिए, जिससे अनावश्यक पानी का निकास हो सके और उपयुक्त समय पर सिंचाई भी किया जा सके। बीजों की बुआई से 24 घंटे पूर्व पानी में भिगो कर रखना चाहिए। नर्सरी में उर्वरक की उपलब्धता हेतु 50 ग्राम डाई अमोनियम फास्फेट तथा 200 ग्राम गोबर खाद प्रति वर्ग मीटर की दर से नर्सरी में देना चाहिए।

कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप सुन रहे थे सामयिक सुझाव का विषय संकर धान की खेती। मीडिया वेब और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:51 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे कुछ सरगुजिया एवं सादरी लोकगीत। कलाकार होंगे जयराम और साथी राम नरेश और इनके साथ शिवा बेग और इनके साथी। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम वीर बंदन आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। दोपहर 1:40 पर आप सुन सकेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर।

हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे युवा सोच कविता पाठ और फिल्म संगीत। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। कार्यक्रम में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा का विषय प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पोषक अनाजों से समृद्धि, पोषक अनाजों की वापसी, बदलती खाद्य आदतें और नई संभावनाएं। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम

संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जयराम और साथियों के स्वरों में इस रामचर्चा कर्मा गीत से।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राम नरेश और साथियों के स्वरों में सरगुजिया भुइहारी गीत।

इस भुयारी गीत के बाद कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शिवा बेक और साथियों के स्वरों में सादरी भजन गीत।

शिवा बेक और साथियों के गाए सी सादरी भजन गीत के साथ ही कार्यक्रम गूंजे जंगल अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल से। शायर हैं मदन पाल।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में नदीम परमान का कलाम।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। नमस्कार सरगुजा।

0: विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

नमस्कार। जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में आपका स्वागत है। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। यह कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए।

नमस्कार सरगुजा। पहली खबर एमसीबी जिले से। कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक संपन्न। सुशासन तिहार के आवेदनों के त्वरित निराकरण, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की मजबूती और शुद्ध पेयजल आपूर्ति पर विशेष जोर। 9484 आवेदनों में 5261 का निराकरण। विभागवार समीक्षा कर अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। एमसीबी जिले में जिला स्तरीय समर कैंप में बच्चों की प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन। हस्तशिल्प, कला, योग, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन। अधिकारियों ने की मुक्त कंठ से सराहना। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय मनेंद्रगढ़ में जिला स्तरीय समर कैंप का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न पीएम श्री विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा 10 दिवसीय समर कैंप के दौरान तैयार की गई हस्तकलाओं, शिल्प कृतियों, कलात्मक मॉडलों एवं क्राफ्ट सामग्री की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने योग, संगीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी बहुमुखी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। एमसीबी जिले के बिरहोर बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। नवोदय आवासीय विद्यालय में कक्षा पहली और छठवीं में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित। विद्यार्थी 30 जून तक कर सकेंगे आवेदन। शिक्षा के साथ आवास, भोजन, पुस्तकें और चिकित्सा सुविधा पूरी तरह से निशुल्क। कार्यक्रम में जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ और भी खबरों के लिए। उससे पहले आइए सुनते हैं शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म सीआईडी का गीत।

नमस्कार सरगुजा, खबर एमसीबी जिले से। स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उप जेल मनेंद्रगढ़ में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण का एवं स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में बंदियों के स्वास्थ्य की व्यापक जांच कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया गया।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774, 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: फिर से स्वागत है एक बार आप सभी का, नमस्कार सरगुजा में। खबर अंबिकापुर से। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा सरगुजा द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए वृहद सदस्यता अभियान प्रारंभ करने की प्रक्रिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय अंबिकापुर में की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिक, सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थाओं एवं विभिन्न वर्गों के लोगों को

क्रॉस की मानवीय सेवाओं से जुड़ना है। रेड क्रॉस सोसाइटी आपदा प्रबंधन, रक्तदान, स्वास्थ्य जागरूकता, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता जैसे विभिन्न जन हितकारी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुनते हैं कुछ और भी खबरें। उससे पहले पेश है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म सूरज का गीत।

नमस्कार सरगुजा, नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को होगी आयोजित। कलेक्टर एसपी ने पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र में तैयारियों का लिया जायजा। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने दिए निर्देश। जिले में 13 परीक्षा केंद्रों में 5212 परीक्षार्थी होंगे शामिल। सत्रह से 21 जून तक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में होगा वृहद योग शिविर का आयोजन। जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि संचालनालय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी आयुष नवा रायपुर के निर्देश के पालन में सरगुजा जिले में संचालित 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर लमगांव लुंड्रा धौरपुर उदारी अंबिकापुर दरिमा बदौली गेरसा भूसू एवं उदयपुर शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय अंबिकापुर एवं आयुष विंग एलोपैथी जिला चिकित्सालय में 17

जून से 21 जून 2026 तक वृहद योग शिविर का आयोजन किया जाना है। उन्होंने लोगों को अधिक से अधिक संख्या में योग शिविर में भाग लेने की अपील की है। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म राजकुमार का गीत।

0: इन्हीं गीतों और स्थानीय समाचारों के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आज का अंक समाप्त होता है। नमस्कार।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: अभी आप सुन रहे थे जनसंपर्क विभाग से प्राप्त स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल

0: लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है।

0: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने

0: सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर।

कर 30 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वीर वंदन। कार्यक्रम वीर वंदन में मैं गोपेश आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत की उस वीरांगना को जिसका नाम सुनते ही साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए समर्पण की भावना जाग उठती है। जून 1858 में ग्वालियर के निकट युद्ध भूमि में उन्होंने अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की। उनकी बलिदान तिथि को लेकर इतिहास में 17 और 18 जून दोनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन व्यापक रूप से 18 जून को उनका बलिदान दिवस स्मरण किया जाता है।

का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की। उनकी बलिदान तिथि को लेकर इतिहास में 17 और 18 जून दोनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन व्यापक रूप से 18 जून को उनका बलिदान दिवस स्मरण किया जाता है। साथियों, आज हम बातें करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इनका जन्म 19 नवंबर सन 1828 को हुआ। बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जिन्हें परिवार में प्यार से मनु कहा जाता था। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बचपन से ही वे साहसी, तेजस्वी और आत्मविश्वासी थीं। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में उनकी विशेष रुचि थी। उस समय लड़कियों के लिए यह असामान्य माना जाता था, लेकिन मनु ने परंपराओं से आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाई। विवाह के बाद वे झांसी की महारानी बनी। परिस्थितियां बदली, लेकिन उनका आत्मबल नहीं बदला। जब अंग्रेज शासन ने झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया, तब रानी ने प्रसिद्ध संकल्प लिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।

की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता

मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म सिकंदर आज़म का ये देशभक्ति गीत। साथियों, सन 1857 का वर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। इस दौरान झांसी संघर्ष का प्रमुख केंद्र बना। रानी लक्ष्मीबाई ने सीमित संसाधनों के बावजूद अद्भुत नेतृत्व किया। उन्होंने महिलाओं और सैनिकों को संगठित किया। इतिहास बताता है कि युद्ध के दौरान उन्होंने घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में नेतृत्व किया। उनका साहस केवल सैन्य नहीं था, बल्कि यह आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का भी संदेश देता था। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हरिहरन की आवाज़ में फिल्म रोजा का गीत।

कार्यक्रम वीरबंदन में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में राष्ट्रगीत। साथियों, जून 1858 में ग्वालियर के निकट युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। इतिहास में उनकी बलिदान तिथि को लेकर कुछ स्रोत 17 जून और कुछ स्रोत 18 जून का उल्लेख करते हैं, लेकिन उनके साहस पर आज भी कोई मतभेद नहीं है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, आत्मविश्वास और राष्ट्रप्रेम व्यक्ति को अमर बना देता है। आज भी देशभर में उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती है। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बी प्राक की आवाज़ में फिल्म केसरी का देशभक्ति गीत।

साथियों, रानी लक्ष्मीबाई केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की जीवंत प्रेरणा है। श्रोताओं, इसी संदेश के साथ सुनिए कार्यक्रम वीरबंदन का आखिरी गीत फिल्म पूरब और पश्चिम से। स्वर हैं महेंद्र कपूर के।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर वंदन, मीडियम वेब पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में कार्यक्रम गांधी चर्चा हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

पर है। गांधी चर्चा इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ।

0: श्रोताओं, गांधी चर्चा में आज सुनिए श्रीमती तारा बहन के बारे में गांधी जी के विचार।
1: हिंदुस्तान के गांवों के लिए उसके हृदय में जो प्रेम था, उसमें कोई उससे बाजी नहीं मार सकता था। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हम में से अच्छे लोगों में जितना उत्साह है, उससे कम तारा बहन में नहीं था। दर्जे की छुटाई जहां भी देखती अधीर हो जाती थी। गरीब स्त्रियों और बच्चों से वह इतनी आज़ादी के साथ मिलती थी कि देखते ही बनता था। सेवा करके वह किसी का उपकार कर रही है, यह भावना तो उसमें थी ही नहीं। किसी से उसने अपनी सेवा नहीं कराई, किंतु कोई भी हो, उसकी सेवा वह अत्यंत उत्साह के साथ करती थी। उसने अपना अहंकार धो डाला था। ऐसी मूक सेविका थी वह कि उसके बाएं हाथ को पता नहीं लगता था कि दाहिने हाथ ने क्या काम किया है। ईश्वर उसकी दिवंगत आत्मा को चिर शांति दे। प्रायः हर विलायती डाक से मेरे पास स्वर्गीय तारा बहन यानी कि मेरी चेसले के सगे संबंधियों और मित्रों के पत्र आते रहते हैं। इनमें उनके अनेक गुणों का वर्णन रहता है। कई सज्जन उनके अनेक प्रकार के उपकारों का वर्णन करते हैं जो स्वयं तारा बहन ने उन पर किए। कुछ लिखते हैं कि उन्होंने हमें फलां फलां सहायता देने का वचन दिया था, और कुछ तारा बहन द्वारा छोड़े गए एक या अनेक विरासत नामों का भी उल्लेख करते हैं। हालांकि महादेव देसाई इन सब पत्र भेजने वालों को अपने थोड़े समय में जितना उनसे बन पड़ता है ब्यौरेवार जानकारी देने की कोशिश करते हैं।

फिर भी तमाम संबंधित लोगों के लाभ के लिए ये जाहिर कर देना ज़रूरी है कि अपनी शोचनीय मृत्यु के कुछ ही समय पहले उन्होंने मेरे नाम पर जो विरासतनामा लिख दिया था वह कानूनदा मित्रों की राय में भारतीय विरासत के कानून के अनुसार वैध नहीं मालूम होता। पर अगर यह साबित भी हो जाए कि वह वैध है तो भी उसके सगे संबंधियों और मित्रों की अनुमति के बिना उनकी संपत्ति का उपयोग हिंदुस्तानी ग्रामोद्योगों के लिए करने की मुझे ज़रा भी इच्छा नहीं है। यद्यपि ये काम उन्हें अत्यंत प्रिय था और इसके लिए वह एक गुलाम की तरह काम करते करते वीरोचित मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो गईं। इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि स्वर्गीय तारा बहन की वह संपत्ति मेरे हाथ आ जाएगी जिसका कि वह अपने जीवन काल में किसी प्रकार का विनियोग नहीं कर गई हैं। पर अगर ऐसा हुआ तो उसे हाथ लगाने से पहले मैं उन तमाम वचनों या वादों की जांच करूंगा जो उन्होंने पश्चिम में किए और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करूंगा। बैंक से उनके नाम पर आए हुए कई चेक मेरे पास पड़े हुए हैं जिनका भुगतान भी नहीं हुआ है। उनके परिवार के बहन भाइयों से जिनकी संख्या मैं देखता हूँ बहुत बड़ी है, मेरी ये सलाह है कि उनमें से जो सबसे नज़दीकी हों राज्य से इस संबंध का एक कानूनी अधिकार पत्र लेकर वह मेरे पास भेजें ताकि मैं और कुमारी मेरी बार हमारे पास रखी हुई तारा बहन की चीज़ें सौंप सकें। मेरे पास तो अनभुने चेक पड़े हुए हैं और मेरी बार के पास उनके कुछ छोटे मोटे जेवर हैं। हिंदुस्तान में आने पर अपनी ज़रूरतें उन्होंने इतनी कम कर दी थी कि शायद ही कोई ऐसी चीज़ बची हो जिसकी कोई कीमत आ सके। अपने जीवन काल में उन्हें जो कुछ मिला उन्होंने ग्राम सेवा के लिए मुझे दे डाला। उस स्वर्गीय उपकार शीला देवी से संबंध रखने वाली बातों के विषय में मेरे पास तो इतनी ही जानकारी है। आशा है यह उनके तमाम संबंधित लोगों के लिए काफ़ी होगी।

गांधी चर्चा में आप सुन रहे थे श्रीमती तारा बहन के बारे में गांधी जी के विचार। श्रोताओं, अगले अंक में हम आपको सुनवाएंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों की लंबी श्रृंखला।

0: गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के संस्मरण, मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमाशंकर के थे। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे रायपुर केंद्र से गांधी चर्चा, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में मैं गोपेश आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जून का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को तेज धूप और लू की याद आती है, पर अगर ध्यान से देखें तो जून सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि मौसम के बदलाव का सबसे सुहाना महीना है। ये वो समय है जब तपती धरती पर पहली फुहार पड़ती है और प्रकृति नया श्रृंगार करती है। साथियों, जून के दो रूप हैं। पहला पखवाड़ा, जब सूरज आग बरसाता है, दोपहर में सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लू के थपेड़े चेहरा झुलसा देते हैं, पर यही जून का दूसरा पखवाड़ा भी होता है जो जादू लेकर आता है। आसमान में काले घिरते बादल, ठंडी हवाएं और फिर पहली बारिश की बूंदें जो मिट्टी पर गिरती हैं, उनकी बात ही निराली है। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू मन को भिगा देती है। बच्चे कागज की नाव लेकर निकल पड़ते हैं और किसानों का चेहरा खिल उठता है। कार्यक्रम का आगाज करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म लोफर के इस गीत से।

दोस्तों, जून में प्रकृति पूरे रंग पर होती है। दशहरी, लंगड़ा और चौसा की मिठास हर घर तक पहुंचती है। बागों में कोयल कूकती है, मोर पंख फैलाकर नाचते हैं। गुलमोहर और अमलताश के पेड़ लाल पीले फूलों से लद जाते हैं, मानो प्रकृति ने खुद दुल्हन का श्रृंगार किया हो। साथियों, स्कूलों की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे नानी दादी के घर जाने का काम शुरू कर देते हैं। शाम को छत पर पानी छिड़क कर बैठना, बर्फ़ के गोले खाना, रात को खुले आसमान के नीचे तारे गिनना, जून की ये यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाज़ में फिल्म चांदनी का गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। साथियों, भारत के लिए जून सबसे अहम महीना होता है। मानसून की पहली बारिश इसी महीने में आती है। जैसे ही केरल में मानसून दस्तक देता है, पूरे देश में उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। किसान हल बैल लेकर खेत में उतरता है। सूखी धरती पर जब पानी पड़ता है तो लगता है जैसे धरती ने भी चैन की सांस ली हो। साथियों, जून की बारिश सिर्फ पानी नहीं, करोड़ों लोगों के लिए रोजी रोटी लेकर आती है। जून का महीना हमें सहनशीलता और उम्मीद सिखाता है और ये बताता है कि कितनी भी धूप हो, उसके बाद ठंडी फुहार जरूर आती है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म शोर का गीत।

साथियों, जैसा कि हमने पहले बताया, जून का महीना मौसम के लिहाज से काफ़ी परिवर्तनशील माना जाता है। कहीं तेज़ गर्मी रहती है तो कहीं प्री मानसून बारिश शुरू हो जाती है। तापमान और नमी में लगातार बदलाव शरीर पर प्रभाव डालते हैं। इस मौसम में कुछ सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिनमें प्रमुख हैं डिहाइड्रेशन, वायरल संक्रमण, फूड पॉइजनिंग और त्वचा संबंधी समस्याएं। कार्यक्रम में आगे इनसे बचने के कुछ सामान्य उपाय और सावधानियों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की आवाज़ों में फिल्म साहिबा का गीत।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, जून के मौसम में होने वाली छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, हमेशा ताजे और स्वच्छ भोजन का सेवन करना चाहिए, कटे हुए फल और खुले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, घर से बाहर निकलते समय छाता या टोपी का उपयोग सिर ढकने के लिए करना चाहिए, मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन इस मौसम में हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाता है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम बदलने के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम लाभकारी होते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में फिल्म नगीना का गीत।

साथियों, भारत में वर्षा का अधिकांश जल मानसून के दौरान प्राप्त होता है। यदि बारिश से पहले उचित तैयारी कर लें तो बड़ी मात्रा में पानी को संरक्षित किया जा सकता है। जल संरक्षण आज के समय सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। घरों, विद्यालयों और कार्यालयों की छतों से वर्षा का जल एकत्र कर टैंकों या रिचार्ज पिट में संग्रहित कर लेना आज के समय में काफ़ी उचित और कारगर उपाय है, जिससे हम पानी जैसे संसाधन को बचाकर रख सकते हैं। बरसात से पहले जल स्रोतों की सफाई कर लेने से अधिक पानी संग्रहित किया जा सकता है। साफ नालियाँ वर्षा जल के सुचारू प्रवाह में मदद करती हैं और जल भराव को भी कम करती हैं। पेड़ पौधे जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और भूजल स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो तो वृक्षारोपण करें, ताकि पर्यावरण की भी रक्षा हो। कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दिल तुझको दिया।

लता मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन अब समाप्त होता है। कार्यक्रम के आज के अंक से मुझे यानी अपने रेडियो साथी गोपेश को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। सुबह के 9:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी लाइन परियोजना को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन जिलों में कम वर्षा की आशंका है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी को एनआईए में आईजी नियुक्त किया है। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबी चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को लगभग 755 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत चांपा और कोरबा के बीच तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहले से स्वीकृत मड़वारानी सड़क बूंदिया खंड को शामिल नहीं किया गया है। यह रेल गलियारा भारतीय रेल के मिशन 3000 MT और उच्च घनत्व नेटवर्क कॉरिडोर के तहत बनेगा, जिसका उद्देश्य माल ढुलाई को सुदृढ़ करना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में अब से कुछ देर बाद अभनपुर से कुरूद के बीच नई ब्रॉडगेज लाइन का स्पीड ट्रायल किया जाएगा। स्पीड ट्रायल के दौरान रेलवे ने आम लोगों से

रेलवे लाइन से दूर रहने और अपने मवेशियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने को कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ सीजन के लिए देश भर में की जा गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री चौहान ने कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाए। श्री चौहान ने कहा कि जिन जिलों में कम वर्षा या आसमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से पूरी तैयारी की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में IG नियुक्त किया है। सुंदर राजपी बीते करीब 8 वर्षों से बस्तर में पदस्थ रहे। उन्होंने अनेक नक्सल विरोधी अभियानों का सफल नेतृत्व किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई और फ्रांस के इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नार्ड यूरोप के बीच ड्यूएल ज्वाइंट डिग्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता फ्रांस के नीस शहर में 14 से 16 जून के बीच आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के दौरान हुआ। ड्यूएल ज्वाइंट डिग्री समझौते के तहत दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों को एकीकृत शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और फ्रांस में अध्ययन का अवसर मिलेगा। छात्र IIT भिलाई तथा इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नार्ड यूरोप दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्रियां अर्जित कर सकेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक नामांकन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों से इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए आवेदन करने की अपील की है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान नदी, नालों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऐसे छोटे तालाब और जलस्रोत जिनका संपर्क किसी भी नदी नाले से नहीं है उन्हें इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर तेज हवा चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना होते हुए दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और हल्की वर्षा होने की संभावना है। जशपुर जिले में बीज गोला बनाबो जशपुर के जंगल्ला बढ़ाबो महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत कल 18 जून को जिले के भैरवगढ़ पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी सहित विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर एक ही दिन में लगभग 2,00,000 सीड बॉल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन जिलों में कम वर्षा की आशंका है वहां पहले से पूरी तैयारी की जानी चाहिए। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी को NIA में IG नियुक्त किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी रायपुर से कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। सुनते हैं तापमान संबंधी सूचना। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हमारे शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान सूचना के बाद पेश है कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं। सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

दिन के 11:05 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर 12 बजे हम आपको सुनवाएंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। शीर्षक गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम घर गोसाइन। कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय होगा महाराणा प्रताप जयंती। साथ ही आप सुनेंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गोठबात कार्यक्रम। पत्रों और मेलों पर आधारित चर्चा होगी जल संरक्षण पर। श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे दोपहर 1:40 पर।

हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:30 पर हम आपको सुनवाएंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे युवा सोच कविता पाठ और फिल्म संगीत। कार्यक्रम गोधोली में शाम 6:20 पर आप सुनेंगे बिंदु दास रामाधार और साथियों के स्वरों में कुछ सरगुजिया लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। बातचीत का विषय होगा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। साथ ही कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे आजकल हरा चारा उत्पादन विधियां और लाभ, कस्टम हायरिंग सेंटर। रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश। सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम। रात 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। रात 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनभावन। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे कुछ फरमाइशी फिल्मी नगमे। साथियों, ये थी जानकारी हमारे आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। पेश है नए फिल्मी गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अभिजीत और श्रेया घोषाल के गाए फिल्म बेशर्म के इस गीत से। गीतकार हैं राजीव और संगीतकार हैं ललित पंडित।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में आइए सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से सजाया है सचेत और परंपरा ने। फिल्म का नाम है कबीर सिंह।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अजब प्रेम की गजब कहानी, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत अतीफ असलम की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म पागलपंथी से। स्वर हैं आशीष कौर और जुबिन नौटियाल के। इस गीत को लिखा है शब्बीर अहमद ने और धुन बनाई है तनिष्क वाक्ची ने।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
3: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
2: अच्छा, वो कैसे?
3: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
2: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
3: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
2: अरे वाह, 07774 230 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
3: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म दुकान का गीत। इस गीत को लिखा है श्रेया शौर पौराणिक ने।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं?
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के।
1: हाँ।
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच।
1: हाँ।
0: और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं।
1: हाँ।
0: अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एलाएदे सुन सकते हैं।
1: हाँ, अब ये तो शुरू होएगी साहेब।
0: हाँ। तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गदर 2 से। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और धुन बनाई है मिथुन ने। आवाजें हैं विशाल, नीति मोहन, आहिल और शहनाज की।

कार्यक्रम नए तराने में आइए सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत से सजाया है प्रीतम ने। स्वर हैं आतिफ असलम और चिन्मयी के। फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: नेहा कक्कर की आवाज में आइए सुनते हैं फिल्म फोर्स 2 का गीत। गीतकार हैं कुमार और संगीतकार हैं गौरव।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म जैकपॉट का गीत। इस गीत को लिखा है तुराज ने।

अभी आप सुन रहे थे नए फिल्मी गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी।

0: समाचार एवियों फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन्डर लाइन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष में 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इसमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका और इजराइल के सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन के लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फिल्म तेरी कसम का ये गीत। आवाज़ है अमित कुमार की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने। इस गीत के फरमाइश करता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान। पोतला से मुजद्दपा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मिका बिरक।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कार्यक्रम आपकी पसंद में अगली गीत को सुनना चाहा है ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रैंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म घरौंदा का ये गीत। आवाज़ है भूपेंद्र और रूना लैला की, बोल हैं गुलजार के और धुन है जयदेव का।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में,

कार्यक्रम आपकी पसंद में लीजिए सुनिए फिल्म प्रेम रोग का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहा है दिल्ली शहर मुरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अब सुनते हैं फिल्म लोफर का यह गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को सुनना चाहा है देवीगंज रोड अंबिकापुर से राकेश श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा।

चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और

0: हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर के

और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा यह गीत। इस गीत को सुनना चाहा है चारमीनार चौक, गंडई पंडरिया से दरियानामल, अनीता मोटवानी, राजेश, रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश, कमल सेतपाल, भूमिका और सुशीला दादी, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजिए और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: मीडियम वेव 238.09 और FM बैंड 100.2 पर ही आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सुनते हैं फिल्म जूली का यह गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत राजेश रोशन का है। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर और ध्वनि गवाड़कर, ग्राम बगबुढ़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका नेताम, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं। हाँ। बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नी बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला दे सुन सकते है।
1: हाँ, अभी तो शुरू होगी साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं फिल्म समाधि का यह गीत। लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाज़ में गीत के बोल राजेंद्र कृष्णन ने लिखे हैं और संगीत सी रामचंद्र का है। इस गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने। वरुण से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा ने। कालका से शबचंद्र बजाज, बिद्रा बजाज और साहिल ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। दोपहर के 11:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी। ईडी ने भारतमाला और डीएमएफ घोटाले के सिलसिले में कल प्रदेश के 9 स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान। और मुख्यमंत्री आज सूरजपुर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के साथ ही गरियाबंद में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 42 किलोमीटर लंबी चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को लगभग 755 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत चांपा और कोरबा के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहले से स्वीकृत मड़वारानी सरग बुंदिया खंड को शामिल नहीं किया गया है। यह रेल गलियारा भारतीय रेल के मिशन 3000 MT और उच्च घनत्व नेटवर्क कॉरिडोर के तहत बनेगा, जिसका उद्देश्य माल ढुलाई को सुदृढ़ करना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 9 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई भारतमाला परियोजना भूमि मुआवजा मामले और जिला खनिज न्यास डीएमएफ फंड के उपयोग में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की गई। ईडी की टीमों ने रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर में संबंधित ठिकानों पर दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति विवरण और डिजिटल साक्ष्यों की जाँच की। यह कार्रवाई भारतमाला हाईवे भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में आरोपी जयप्रकाश गांधी की गिरफ्तारी के बाद की गई। गांधी को 3 जून को गिरफ्तार किया गया था। रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत ने पूछताछ के लिए उसे ईडी को रिमांड पर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर और गरियाबंद जिले के दौरे पर रहेंगे। वे सबसे पहले रायपुर से सूरजपुर जाएंगे, जहां पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे गरियाबंद के लिए प्रस्थान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की मौजूदगी में सीएम साय दोपहर 3 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में 700 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। वहीं 4 बजे दर्रीपारा ग्राम में आयोजित आदिवासी समाज के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और नवनिर्मित कचना ध्रुवा गोंडवाना भवन का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में IG नियुक्त किया है। सुंदर राजपी बीते करीब 8 वर्षों से बस्तर में पदस्थ रहे। उन्होंने अनेक नक्सल विरोधी अभियानों का सफल नेतृत्व किया है। कोरिया जिले के कटगोड़ी में रेत खनन को लेकर हुए विवाद में भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने भाजपा नेता के 4 पहिया वाहन में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। घटना

की जानकारी मिलते ही सरगुजा रेंज के आईजी सहित अन्य पुलिस अमला रात में ही मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 3 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। जशपुर जिले में बीज गोला बनाबो, जशपुर के जंगल ला बढ़ाबो महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत कल 18 जून को जिले के भैरव पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी सहित विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर एक ही दिन में लगभग 2,00,000 सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग ने सभी नागरिकों, प्रबुद्धजनों और युवाओं से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। प्रदेशवासियों को जल्द ही चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। भारत मौसम विभाग IMD ने संकेत दिए हैं कि अगले 48 से 72 घंटों के भीतर राज्य में मानसून का आगमन होने जा रहा है। हालांकि मानसूनी तंत्र के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले ही प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आज छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश या तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी। ईडी ने भारतमाला और DMF घोटाले के सिलसिले में कल प्रदेश के 9 स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान और मुख्यमंत्री आज सूरजपुर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के साथ ही गरियाबंद में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: लानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों

0: में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहां तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियां प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के

0: इस स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
1: अच्छा।
0: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
2: अच्छा।
0: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
1: मंगल पांडे
0: 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
2: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के

0: सिपाही बहुत नाराज थे।
1: ऐसा क्यों?
0: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
2: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
3: दादी फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
2: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
4: खुद करनी होगी। सही कहे।
1: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
1: अच्छा?
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
5: हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसा चल नहीं सकता।
3: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
6: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे।
4: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
6: नहीं। भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था। शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था। गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
6: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
7: हम पांडे को अरेस्ट मांगते हैं।
8: मंगल पांडे जिंदाबाद! मंगल पांडे जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद!
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट!
0: सारा सारी छावनी में खलबली मच गई।

0: उसके बाद क्या हुआ दादी?
1: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
2: अरेस्ट करो!
3: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
4: नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे।
0: दादी जी,
1: फिर क्या हुआ? कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: 咁板地球 T 卡拉曼扎海 Durant Hospital Pedro。
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी,
2: हुँ?
4: सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
4: ओ।
5: जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भईल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भईल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भईल, जननी के भेंट परान भईल, आजादी का बल बेदी पा मंगल पांडे बलिदान भेल, जब संतावनी के रारी भैली वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?

0: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
1: अच्छा।
0: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
3: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
4: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
5: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
4: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
5: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
4: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
5: अच्छा माँ।
6: माँ,
5: लो देवेंद्र भी आ गया।
6: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
4: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
5: ठीक है माँ।
6: नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
5: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
6: ये देखो दीदी, ये मारा।
5: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
6: अरे ये मारा।
5: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
6: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
5: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
6: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
4: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
5: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है। अरे
7: हमें अंदर आने दो।
5: अरे क्यों?
8: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
5: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
7: लड़की हट।
5: माँ,
7: ये चाकू देख रही है ना?
8: ज्यादा होशियारी मत दिखा,
5: अरे
8: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
5: हट
8: रास्ते से।
5: क्या हुआ? देखो जल्दी आओ।
4: ये क्या है? अरे अरे, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
7: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
5: मेरी माँ को छोड़ दो।
7: ये चाकू देख रही है ना?
5: छोड़ दो,
4: मुझे मत मारो।
5: कुछ मत करो।
4: चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है।
8: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
4: अरे मेरे बात तो छोड़ो।
5: मेरी माँ को छोड़ो।
7: चुप चुप, आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
8: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
4: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
5: देवेंद्र।
6: हाँ दीदी।
5: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
6: अच्छा,
5: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
6: अच्छा।
5: हेलो।
7: हाँ बेटा बोलो।
5: पापा।
7: हाँ
5: पापा।
7: हाँ बोलो।
5: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
7: कौन घुसा है?
5: माँ को बहुत मार रहे हैं।
7: अच्छा तुम घबराओ नहीं।

0: नहीं तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
1: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
2: अच्छा।
1: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ बचाओ।
3: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशू यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
4: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको, कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
5: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था, मैं तो डरी गई थी।
4: देखो ना, सबकी जान
5: बहादुर है मेरी बच्ची।
3: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अब पेश है शीर्षक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चयन।

श्रोताओं, मन एक अदृश्य शक्ति है जो शरीर का नहीं आत्मा का हिस्सा है। यह न तो देखा जा सकता है न ही छुआ जा सकता है, लेकिन इसकी उपस्थिति हर क्षण हमारे विचारों, निर्णयों और व्यवहार में झलकती है। मन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम दुनिया को अनुभव करते हैं, चाहे वो बाहरी दुनिया हो या हमारी अंतरात्मा की गहराइयाँ। यह इतनी सूक्ष्म इकाई है कि वैज्ञानिक भी अब तक इसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, लेकिन ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना से इसके रहस्यों को जाना है। बातें होंगी आज इसी विषय पर, उससे पहले सुनिए फिल्म बिट्टू बॉस का ये गीत। आवाज़ है साहिद मालिया की, बोल हैं असीम अहमद अब्बासी के, और धुन है गजेंद्र वर्मा का।

0: हजार और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, मन का स्वभाव ही चंचल है। यह बिना किसी रोक टोक के एक क्षण में अतीत में जाकर किसी पुरानी बात को याद करने लगता है, तो अगले क्षण भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। इसी चंचलता के कारण हम बार बार वर्तमान से भटकते हैं और जीवन में अशांति, तनाव और उलझने पैदा होती हैं। मन की इस अस्थिरता को यदि समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो यह व्यक्ति को भ्रमित, अव्यवस्थित और दुखी बना सकता है। ठीक वैसे ही जैसे बिना लगाम के घोड़ा गाड़ी को दुर्घटना की ओर ले जाता है। बातें आगे और भी होंगी, पर उससे पहले सुनिए फिल्म आराधना का ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: श्रोताओं, मन ही वह जगह है जहाँ से हर भावना उत्पन्न होती है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें अच्छा लगता है। यह अच्छा लगना मन की सकारात्मक प्रतिक्रिया है। जब कोई अपमान करे तो क्रोध आता है, यह भी मन की एक प्रतिक्रिया है। हमारे जीवन के हर सुख दुख, प्रेम घृणा, आशा निराशा का सीधा संबंध मन की स्थिति से होता है। यदि मन शुद्ध, शांत और संतुलित हो तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, व्यक्ति भीतर से मजबूत और स्थिर रहता है। बातें यूं ही जारी रहेंगी, पर उससे पहले सुनिए फिल्म टू स्टेट्स का ये गीत, अरिजीत सिंह और चिन्मय की आवाज़ में। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत दिया है शंकर एहसान और लॉय ने।

श्रोताओं, मन की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कल्पना शक्ति। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने मन को साथ लिया, उन्होंने संसार में असंभव को संभव कर दिखाया। चाहे वो थॉमस एडिसन की बल्ब की खोज हो, गांधी जी की अहिंसा की शक्ति हो, या फिर तुलसीदास का रामचरितमानस, सबकी जड़ में एक एकाग्र, प्रेरित और शक्तिशाली मन था। मन में विचार आते हैं, विचार कर्मों को जन्म देते हैं और कर्म हमारी नियति बनाते हैं। इसलिए एक श्रेष्ठ मन ही एक श्रेष्ठ जीवन का नींव है। बातें यूं ही जारी रहेंगी, पर अब सुनिए फिल्म जॉली एलएलबी 2 का ये गीत, जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ में।

श्रोताओं, मन को जीतना ही असली विजय है। शास्त्रों में कहा गया है, मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः, यानी मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। यदि मन को विकारों से मुक्त कर लिया जाए तो जीवन में न सिर्फ सफलता बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है। योग, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय और अनुशासित जीवन मन को संयमित करने के प्रभावशाली उपाय हैं। जैसे तलवार को धार दी जाती है, वैसे ही मन को भी निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म टेबल नंबर 21 का ये गीत गजेंद्र वर्मा की आवाज़ में। बोल हैं असीम अहमद अब्बासी के और धुन दी है गजेंद्र वर्मा ने।

0: अभी आप सुन रहे थे शीर्षक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चयन। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर

0: वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लू और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय है शंकर धान की खेती।
2: आने वाला राज्य है जहां लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, जिसमें से 25 लाख हेक्टेयर उथली निचली भूमि वाले क्षेत्र हैं। यहाँ लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या अधिक है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व पंजाब धान के अच्छे उत्पादन की वजह से अग्रणी प्रदेशों में गिने जाते हैं। स्वपरागित छोटे पुष्पयुक्त धान के पौधों से और अधिक उत्पादन प्राप्त कर पाना एक कठिनतम कार्य था, परंतु इस कष्ट साध्य कार्य को पूरा करने की चुनौती चीन के वैज्ञानिक प्रोफेसर इवान लांगपिंग ने ली और संकर धान को जन्म दिया, जिसने चीन में धान के उत्पादन में एक नई क्रांति ला दी। किसान भाइयों, हम जाने कि संकर धान क्या है। तो संकर धान एक व्यापारिक धान ही है जिसका बीज अनुवांशिकीय रूप से भिन्न दो पैतृकों के संकरण द्वारा तैयार किया जाता है। प्राप्त बीज को संकर बीज या F1 कहा जाता है। संकर धान की उपज क्षमता स्थानीय अति उत्तम अंतः प्रजाति किस्मों से 10-25% अधिक होती है। संकर धान से औसतन 7 टन प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जा सकती है। संकर धान की उपज क्षमता का लाभ उठाने के लिए कृषकों को प्रत्येक वर्ष नया बीज खरीदने की आवश्यकता होती है। हमें संकर धान की आवश्यकता इन कारणों से होती है कि हरित क्रांति के युग के पश्चात उच्च उपज क्षमता वाली बोनी धान की किस्मों की उपज क्षमता में अनुवांशिकीय स्थिरता का आ जाना है। कम से कम भूमि में अधिक से अधिक धान की उपज प्राप्त करना, जनसंख्या वृद्धि के साथ धान की मांग का तेजी से बढ़ना, संकर धान से कृषकों को उपज में 10-25% तक का बढ़ोतरी होना और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संकर धान से अधिक उपज प्राप्त होना। किसान भाइयों, यदि सामान्य प्रजाति और संकर धान में अंतर की बात करें तो सामान्य प्रजाति में स्वपरागित यानी नर और मादा जनन अंग एक ही फूल में होते हैं। धान फसल की कटाई के बाद प्राप्त बीज को पुनः बोने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि संकर प्रजाति में संकर बनाने हेतु 2 जनक पौधों की आवश्यकता होती है, एक नर जनक एवं एक मादा जनक पौधे की। कटाई के बाद प्राप्त बीज को खाने में तो उपयोग लाया जा सकता है, परंतु पुनः बोनी के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसमें संकर ओज में कमी आ जाती है। किसान भाइयों, प्रारंभ में जो संकर धान की किस्में विकसित की गई थी उनमें गुणवत्ता की कमी थी, परंतु वर्तमान में विकसित संकर धान किस्मों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ ने छोटे पतले दाने वाली सुगंधित किस्मों का ज़्यादा प्रचलन है, अतः इनके संकर बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। चावल के पकाने की गुणवत्ता सामान्यतः वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जैसे कि मृदा की उर्वरता, सिंचाई क्रियाविधि, दूरी, रोपाई का समय, कटाई और भंडारण। किसान भाइयों, संकर धान की जो सस्य क्रियाएँ हैं उनके बारे में भी जानना

0: जरूरी है। उर्वरक क्षमता बढ़ाने हेतु भूमि की उपयुक्त तैयारी जरूरी है। संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए। एक की बजाय 3 बार में उर्वरक का छिड़काव किया जाना चाहिए। अधिक नत्रजन के प्रति संकर धान की ज़्यादा उपज होती है। सिंचाई हेतु उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। बालियां निकलने से दूध भरने की अवस्था में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। किसान भाइयों, संकर धान की बुआई रोपा पद्धति से करने पर अधिक से अधिक उपज प्राप्त होती है। इस पद्धति में बीज की मात्रा कम लगती है। नर्सरी में बीज की देखभाल अच्छे तरीके से की जा सकती है। इस पद्धति में खरपतवारों का प्रकोप भी कम होता है। इस पद्धति से धान लगाने से जड़ों एवं कंसों का विकास अच्छा होता है। उर्वरक एवं कीटनाशकों के छिड़काव में आसानी होती है। किसान भाइयों, इसके लिए नर्सरी तैयार करते समय भी हमको सावधानी बरतनी चाहिए। खेतों को 3-4 बार अच्छी तरह जुताई करके अंत में पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। 1 हेक्टेयर के लिए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी पर्याप्त होती है। नर्सरी में क्यारियों की लंबाई आवश्यकता अनुसार रखना चाहिए, लेकिन चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर तक रखना चाहिए। क्यारियों का निर्माण बुआई के 1 से 2 दिन पहले कर लेना चाहिए। क्यारियों को भूमि सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा पर रखना चाहिए। 2 क्यारियों के बीच में नाली होनी चाहिए, जिससे अनावश्यक पानी का निकास हो सके और उपयुक्त समय पर सिंचाई भी किया जा सके। बीजों की बुआई से 24 घंटे पूर्व पानी में भिगो कर रखना चाहिए। नर्सरी में उर्वरक की उपलब्धता हेतु 50 ग्राम डाई अमोनियम फास्फेट तथा 200 ग्राम गोबर खाद प्रति वर्ग मीटर की दर से नर्सरी में देना चाहिए।
1: कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर को साइन।

जय जोहार संगी हो, मैं हूँ सुमतिया बहन, आकाशवाणी अंबिकापुर से आप मन कार्यक्रम सुनता है घर गोसाई। संगी मनकर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मौसम हर जैसे है वैसे बदलत मौसम में तो देखिए लागे कभी बरखा हो जाता है तो कभी सर्दी खांसी बुखार होता है, और यही बदलत मौसम में देखिए अपन स्वास्थ्य के तिहा जतन करना बहुत जरूरी है। देखिए हमला लागिस कि चटिक बरखा मन होए गिस तब देखिए मानसून हर आए गिस, लेकिन फिर दो दिन बाद ऐसा तेज धूप करत है, ऐसा तेज धूप में देखी हमार लड़का मन के तो स्कूल मन भी देखी खुल गई सा है, पढ़ैया लड़का मन भी स्कूल मन जाता है, और ऐसे में देखी स्वास्थ्य के तिहा जतन नहीं करब तो देखी बर बीमारी हर झटकुन धर धार थे। तो हमला स्वास्थ्य के तिहा करना बहुत जरूरी है, और खेती किसानी करे वाला देखी मनखे मन भर तो देखी शुरू हो गई सा है भाई, अब काम बूता हर जोर शोर से चलत है, अपन देखी नांगर मन ला चटिक बढ़िया तैयार मन करत है ताकि देखी बढ़िया से खेती बाड़ी करल जा सके। संगी हो आज देखी मैं कार्यक्रम में बहुत ही भाई विशेष गोट कर हूँ, जैसे कि देखी आज मैं भारत देश के महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप जी के जयंती में चटिक गोट कर हूँ। इनकर देखी जन्म 9 मई 1540 के राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में होए रहीस। मेवाड़ के राजा महाराजा उदय सिंह के पुत्र रहीन। महाराणा प्रताप जी के अपन देखी वीरता अपन स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रेम के प्रति ले देखी पूरा भारत देश में ये प्रसिद्ध रहीन। देखी मेवाड़ कर आन बान शान के हमेशा जीवन भर रक्षा करीन सुरक्षा करीन संघर्ष करीन, और देखी कई कठिनाइयों और संघर्ष के बाद घलो महाराणा प्रताप जी हार नहीं मानीन, देखी अपन पूरा जीवन भर संघर्ष करीन। जंगल पहाड़ में भी रही के अपन राज्य कर देखी अपन सुरक्षा कर तिहा करीन, संगे देखी जो भी अपन राज्य में भाई स्वतंत्रता बनाए के जो प्रयास रहीन इला पूरा करीन। उनकर देखी साहस त्याग और देशभक्ति हर भारतीय इतिहास में सबले सम्मानित नायकों में स्थान भेटा थे इनके। पूरा भारत देश के देखी गौरव महाराणा प्रताप सिंह जी ये सिखाते कि हमला अपन स्वाभिमान सत्य स्वतंत्रता कर रक्षा बर हमेशा

0: देखिए दृढ़ रहना चाहिए। उनका जीवन में देखिए साहस, संघर्ष और राष्ट्र प्रेम प्रेरणा हम अलग देते हैं। और संगी हो देखी यही जब देखी गोटला विराम देहूँ और संगे संग ये कहना चाहूँ कि देखी हमन कोई भी काम बूता करी चाहे कुछ भी करी हमार जीवन में देखी बिना संघर्ष के कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं बेटा है। चाहे पढ़ैया लड़का मन भी हैं चाहे कमैया हमार गांव के किसान मन हैं, जितना जन है देखी अपन जिए खाए पर भी संघर्ष करते हैं, पढ़े लिखे पर भी संघर्ष करते हैं, कुछ काम सीखे पर भी संघर्ष करते हैं। बिना संघर्ष के जीवन ला आप मन देखी थोड़कुन भी एक कदम भी नहीं चल सकता है। लेकिन हमन ला एकर बर देखी सबले पहले स्वस्थ रहना पड़ी। स्वस्थ रहे बर हमन ला का करना है, पहले तो देखी हमार पर्यावरण के तिहा करना है। चाहे हमार देखी हमार कहीं आसपास के जो शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, शुद्ध भोजन है, हमार जो एक तरह से कही कि जो जीवन चक्र चलता है जिसमें हमार बर सब चीज जरूरी हवे, हमार जीव जंतु भी जरूरी हैं, जल भूमि पेड़ पौधा जम्मो जैत हमार बर जरूरी हैं। ये बात ला अगर हमन समझ लेबो तो आए वाला पीढ़ी ला हमन देखी कुछ कहीं तोहफा के तौर में हमन देखी शुद्ध हवा पेड़ पौधा पानी जल जंगल जमीन दे सकत ही एक उपहार के ओर में। तो एकर बर देखी हमन ला कोशिश करना है कि ए आए वाला बरखा में बगरा से बगरा हमन ला पेड़ पौधा लगाना है, पानी के बचत करना है, प्लास्टिक कर कम उपयोग करना है, आस पास स्वच्छता बनाए रखना है। छोटा छोटा देखिए अगर यही छोटा प्रयास मिल के हमन चमुझन करत ही तो देखिए एक बरखा काम हो जाही। तो कोशिश करी कि जितना खाली जगह है आस पास में ये बरखा में पेड़ पौधा लगाई और ओकर तिहा जतन करी, ताकि देखिए आए वाला समय में पेड़ पौधा जैसे कटत जाते हैं कमी हो जाता है जेकर से जल जंगल जमीन जम्मू जैत खतरा में है वह हमार कम हो सके। और हमन देखी जैसे कहें कि हमार आए वाला पीढ़ी ला एक स्वच्छ सुरक्षित भविष्य दे सकत हन। देखी आज कर दिन बहुत ही विशेष दिन हवे, आज हमार देखी बुध हवे और बुध के हमन लानथी गोट बात कार्यक्रम। और सुगर सुगर संगी मन के देखी पत्र मन भी शामिल करहूँ ईमेल द्वारा जो ऐसा है चिट्ठी मन ला शामिल करहूँ, लेकिन ओकर ले आगू एगो संदेश है एला सुन लेहल जाए।
1: QR कोड स्कैन करो 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: हाँ तो संगी हो देखी संदेश मन ला सुनें। संगे देखी आज पहला ईमेल द्वारा जे चिट्ठी आई सा है देखी आज बिहान बिहान भेजी न है चिट्ठी ला और ये भेजी न है देखी नियमित श्रोता है प्रेम साय राजवाड़े सोमार साय मेर साय श्री भगत हेमंत कुमार राम खेलावन सिंह पैकरा और लिखिन है घर गोसाइन प्रस्तुत करैया दीदी मन ला हमार डहर ले राम राम जय जोहार। तो हमरु कति ले राम राम जय जोहार हमार प्रेम भैया ला। संगे लिखिन है हमार जम्मोच कार्यक्रम ला बड़ा ध्यान ले सुनथन। संगे देखी लिखिन है दिनांक 15 जून के हमर जो किस्मतिया दीदी कार्यक्रम लाने रहिन थे ढेरेज बढ़िया लागे रहिस। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप मन इतना भाई अपन समय ला बचाए के कार्यक्रम ला सुनथा एकर पर बहुत दिल से धन्यवाद है। चलिए इनकर पसंद कर कार्यक्रम के सुघर पहला गीत ला सुनल जाए।

हाँ तो संगी हो देखी सुग्घर अकन हमन भोजपुरी लोकगीत ल सुनिन योगेंद्र सिंह अम्बेला कर गाल गीत रहिस। देखी ईमेल द्वारा जो दूसर चिट्ठी ऐसा है ए ऐसा है ग्राम पंचायत खोदला उदयपुर सरगुजा ले आओ भेजवैया भैया बहनी मन के नाम हवे जीवधन सिंह पैकरा घुरनी पैकरा करिश्मा पैकरा सोमार साय कलेश्वर सिंह सुखराम पैकरा हीरामणि पैकरा ऐश्वर्या पैकरा सुनील सोनी और देखी नगदे अकन हमला बधाई देहीन है और संगे संगे लिखिन है कि हमला ममता चंद्राकर के आवाज़ में गीत ला जरूर सुनवाए दी हो। तो चलिए इनकर पसंद कर गीत ला

हाँ तो संगी हो देखी सुघर अकन हमन ममता चंद्राकर कर गाल गीत ल सुनेन संगी हो देखी गुड बात कार्यक्रम कर आनंद लेत हुई हो तो हमन ल देखी ईमेल जरूर करी हो। हमार ईमेल आईडी है ghargosain@gmail.com। हमार जग झटकुन चिट्ठी हर शामिल हो जाही और पटकुन हमन शामिल भी कर देबो। तो देखी हमार कार्यक्रम ल आगू बढ़ाऊँ और मोर जग सुघर अखन एक ठो चिट्ठी ऐसा है ऐसा है पलारी छत्तीसगढ़ ले और भेजवैया भैया बहनियों के नाम हवे नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन और तनुजा देवांगन ईशांत देवांगन और पराग टेलर और संघे लिखिन है हमला कोई भी गीत में शामिल कर दे हो एक कार्यक्रम हर हमला ढेरेज बढ़िया लागते। तो चलिए इनकर पसंद कर गीत ला सुनल जाए।

हाँ त संगी हो देखी सुघर सुघर हमन गीत ल सुनेन भाई, भोजपुरी रहीस, छत्तीसगढ़ी रहीस हमर, और देखी ढेरे अकन गीत मन कर आनंद लेहन। संगे देखी हमन ये बताना चाहूँ कि हमर कार्यक्रम हर बुध के गोट बात कार्यक्रम कर प्रसारण करल जाते। आप मन देखी ईमेल कर सकत हा, ईमेल आईडी है हमर देखी ghargosain@gmail.com। एमे आप मन हमन ला ईमेल द्वारा चिट्ठी भेज सकत हा, और संगे संगे देखी अपन सुझाव ला भी लिख भेज सकत हा, या देखी कुछ सुझाव देना चाहता है, या कुछ शिकायत है, या हमर कार्यक्रम में काहर बढ़िया लागत है, काहर नहीं लागत है, जमोला विस्तार रूप से भी लिख के आप मन भेज सकत हा। और देखी सुघर सुघर देखी हमर संगी मन के चिट्ठी मन ला पढ़ के तो मन हर देखी बड़ा खुश हो जाते कि देखी इतना समय निकाल के और देखी हमर कार्यक्रम ला सुनते हैं। संगे देखी कुछ नियमित श्रोता भी हैं हमर भैया बहनी मन, जेमन देखी हर बुध के का हर दिन कर कार्यक्रम ला सुनते और देखी अपन विचार ला भी हमर से साझा करते, हमर से जुड़े रहते हमर ईमेल के माध्यम से। तो देखी ईमेल करे बर झन भूलई, ईमेल आईडी एक घाव आओ बताए देहूँ, ghargosain@gmail.com। संगी हो देखी और देखी अपन ये बदलत मौसम में अपन स्वास्थ्य कर विशेष रूप से तिहा जतन करी। हमर लइका मन के देखी स्कूल मन हर खुले वाला है, पढ़ैया लइका मन के स्कूल मन कर देखी जोर शोर से देखी कापी किताब बस्ता मन कर तैयारी भी हमर भैया बहनी मन करते हैं। संगे देखी अपन खेती बाड़ी के काम ला भी देखी जोर शोर से शुरू कर धारिन है। तो ए बछर देखी हमार नोनी होए चाहे बाबू, जम्मू झन ला स्कूल भेजना बहुत जरूरी हवे। कहे कि देखी नोनी होए चाहे बाबू, शिक्षा के अधिकार दोनों झन ला है, और दोनों झन पढ़ी जब तक आगू नहीं पढ़ी, पढ़े ले देखी अपन जिंदगी लग गैर सकत है। तो यही जात जाते ही कहूँ कि अपन स्वास्थ्य कर विशेष रूप से तिहा करी, हमार लइका मन के बढ़िया ले बढ़िया स्कूल जाए के तैयारी करी, चाहे नोनी रहे चाहे बाबू, दोनों झन के शिक्षा के अधिकार है, भेदभाव झन करी, नोनी मल्ला भी भेजी बाबू मल्ला भी।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। अब पेश है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम की शुरुआत में फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये गीत कुमार सानू की आवाज़ में, गीत लिखा है मजरू ने, संगीत है जतिन लतीफ़ का। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है अकोला से सुरेश रॉय, अलका रॉय, दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमरसाय, कमलेश्वर से सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, अनारकली वजार, जगराव पंजाब से, फिरोजाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजूलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि और आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, पश्चिम बंगाल रानीगंज से रिहान शर्मा और करणदीप, सिंधेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आज़ाद, पोपोरानी, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, याशी, हनी, पूजा, सीता एवं परिवार के सभी सदस्य, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण ने। और इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन, ग्राम सौगा मगलडोर से। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदा बार नवापारा से। राजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सांध्वी। ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव और अनुसया जाधव। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल देवांगन। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घुटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। रामानुजगंज श्रीनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सुखराम सिंह मरावी, सुहानी सिंह, बिमला सिंह। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा,

आज का अगला फरमाइशी ईमेल हमें लिखकर भेजा है मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से सुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो, दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल ने बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हमें ये ईमेल की फरमाइश की है। डायमंड रेडियो श्रोता संघ महबूब पारा सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद जावेद खत्री, बेगम सबीना खत्री, मोहम्मद जैद खत्री, मुनीरा मोहम्मद इकबाल खत्री, राजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बंसल कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, अन्विका तनुश्री, अजय, पिहरा बाजार झुमरी तिलैया, गिरिडीह से अभय कुमार सनातनी, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, संजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल निशा, ग्राम बुटगहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा। तो आप सभी की फरमाइश पर प्रस्तुत है फिल्म यस बॉस का ये गीत। आवाज़ दी है अभिजीत और अलका याग्निक ने, गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम में अगली गीत के लिए हमें फरमाइश ईमेल के माध्यम से भेजी है। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू लाल रजक, मुरली क्षत्रिय, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार,

टीडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश है फिल्म ओम शांति ओम का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

कार्यक्रम के आखिरी फरमाइशी गीत के लिए हमें ईमेल भेजा है तिलक नगर नई दिल्ली से आरएस स्वीटी और आरके शुक्ला, जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और जीनत जहां, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, उमरखेड़ा से प्रभा रानी जयपुरिया, कस्बा बराडा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, नामचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, दतरेंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा, लिवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और राबी मानिकपुरी, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, सोपान ताइडे, नारायण इंगले और आशीष मुरहेकर, ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश है फिल्म दीवाना का ये गीत, जिसे गाया है विनोद राठौड़ ने, लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल की गूंज। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर की 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
2: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के

0: बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्यवाहियों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं।

0: गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद

0: मोदी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए अशोक खोसला की आवाज़ में ये गज़ल।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कार्यक्रम गीत गंधा में अब पेश है मिर्ज़ा गालिब की लिखी हुई ये गज़ल, जिसे गाया है मेहंदी हसन ने।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड में ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कार्यक्रम में अब सुनिए अदनान सामी और आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

कार्यक्रम गीत गंधा में अब पेश है सोनू निगम का गाया हुआ यह गीत, जिसे लिखा है फैज़ अनवर ने और संगीत दिया है निखिल विनय ने।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। दोपहर के 3 बजे हैं। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। 5:05 पर फिल्मी और गैर फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। 5:30 पर युवा सोच, कविता पाठ और फिल्म संगीत से सजा युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा। 6:05 पर सामयिक विषयों पर आधारित विचार बिंदु का पुनः प्रसारण किया जाएगा। 6:10 पर रायपुर से प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार आप सुन सकेंगे। 6:20 पर लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली प्रस्तुत किया जाएगा। 6:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। 7:05 पर हम लेकर आएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 7:20 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। 8:00 श्रोताओं की पसंद के गीतों पर आधारित कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश सुन सकेंगे। 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 9:30 पर दिल्ली से सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम चर्चा का विषय प्रसारित किया जाएगा। 10:00 श्रोताओं आप सुन सकेंगे आपकी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। 10:30 पर मधुर गीतों का कार्यक्रम मन भावन प्रस्तुत किया जाएगा। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मेरे इन्वेस्टमेंट डूब गई,
1: मेरे रिटर्न्स रुक गए,
2: मेरा अकाउंट हैक हो गया।
0: की करा?
1: कौन मदद करेगा?
2: किथे करा शिकायत?
3: RBI दे सचेत पोर्टल ते। ऑनलाइन तो खतड़ी जाली निवेश योजनामा अनधिकारक जमा रकमा अते होर वित्तीय अपराधा दी रिपोर्ट एथे करो, जिसनु संबंधित संस्थानु भेजा जावेगा ताजो बनदी कारवाई कीती जा सके।
4: RBI कहिंदा है
3: सुचेत रहो, सुरक्षित रहो।
5: Dominate the Rift with Opera GX. Install any official LOL eSports mod from GX Store to unlock bonus content and features. Browse the collection and choose a mod. Open GX Corner and scroll to the Riot section with a brand new co-streaming hub. Set your language and choose a stream. Only on the browser for gamers. Only on Opera GX.

0: मेरे इन्वेस्टमेंट डूब गई,
1: मेरे रिटर्न्स रुक गए,
2: मेरा अकाउंट हैक हो गया।
0: की करा?
1: कौन मदद करेगा?
2: किथे करा शिकायत?
3: RBI दे सचिव पोर्टल ते। ऑनलाइन तो खतड़ी जाली निवेश योजना मा अनधिकारक जमा रकमा।
4: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

कमल हो गए, दिव्या हो गए, जय हो गए, इन्होंने भी जो है बुलढाणा से हमें मैसेज किया है। श्रोताओं, आपके इन प्यार भरे मैसेजेस के लिए आपका बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया कहने से काम नहीं चलेगा, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि गाना क्यों नहीं चलाया, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी पाबंदी है, मेरे पास भी समय कम रहता है, पर आप जो है नाराज़ मत होइए और गुस्सा मत होइए, माफ़ कर दीजिए अगर मैं आपके मैसेजेस को शामिल नहीं कर पाई। पर हाँ, आप हमेशा इसी तरीके से अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में मैं आपके लिए लेके आऊँगी समाचार, और 5 बजे मैं आपसे मिलूँगी प्रोग्राम गाते गुनगुनाते के साथ।

0: पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झनझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झनझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा।
1: सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है।
0: सेंसोडाइन वाकई काम करता है।

सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारे सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

रेडियो वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है हमारी सांध्यकालीन सभा के आरंभ होने का। सभा की शुरुआत में लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोट कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये दरहोरा सेमई करंजवार खरसोता परमेश्वरपुर हरिहरपुर पार्वतीपुर कैराडांड सिंगरा भरदा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल

0: संख्या छह है। ये मिंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, भगवानपुर, नवापारा, जवाखाण, अखोरा, कुंदी कला, जामदोहर, सिधमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, लखनपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, पटकुरा, शिवनाथपुर, घासीडी, बोड़ाझरिया, ढोड़ा गांव, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 97 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछा, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमाटिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राठरोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरीत, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये पारंपरिक भजन। स्वर है बलदेव कृष्ण और साथियों का।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: लीजिए अब सुनिए गुलाम फरीद साबरी और विनोद राठौर का गाया ये भजन।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम का अगला भजन सुनवाने के पहले श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंग्ले लीड्स में आज मैच खेला जाएगा। इसका सीधा प्रसारण हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से 6:30 पर, और इसे आप सुन सकेंगे हमारी मीडियम वेव पर, न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर आकाशवाणी अंबिकापुर से नियमित प्रसारण आप सुनते रहेंगे। तो आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम का अगला भजन, स्वर है सुमंगल अरोरा का।

भजन संध्या कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए सचेत टंडन और परंपरा टंडन का गाया फिल्म आदि पुरुष का ये भक्ति गीत।

सचेत टंडन और परंपरा टंडन के गाए फिल्म आदि पुरुष के इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवा वाणी।

नए जोश, नई उम्मीद, नए ज्ञान के साथ स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की शाम में। तो चलिए करते हैं आज के युववाणी की शुरुआत आपकी दोस्त शालिनी चौबे के साथ। दोस्तों, जनरली हम हमारे युवा सोच में किसी ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जो हमारे जीवन और समाज से जुड़ा होता है, पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे एहसास की जो कभी चेहरे पर मुस्कान ले आता है तो कभी आंखों को थोड़ा नम कर जाता है। उस एहसास का नाम है नॉस्टैल्जिया, यानी पुरानी यादों की मीठी दुनिया। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है अचानक कहीं से कोई पुराना गीत सुनाई दे और आप वर्षों पीछे चले जाएं, या किसी पुराने स्कूल की तस्वीर देखकर बचपन की यादें ताजा

हो जाए। एक पल में ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। पर सवाल ये है, क्या ये पुरानी यादें सिर्फ हमें भावुक बनाती हैं या फिर हमें मजबूत भी बनाती हैं? दोस्तों, यादें केवल अतीत की तस्वीरें नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी के अनुभवों का खजाना होती है। जब हम हमारे पुराने संघर्षों को याद करते हैं, तब एहसास होता है हम कितनी मुश्किल राहों से गुजर कर यहां तक पहुंचे हैं। कभी एग्जाम का डर था, कभी जॉब की टेंशन थी, तो कभी किसी अपने के बिछड़ने का दर्द। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उन कठिन दिनों ने हमें ही मजबूत बनाया। दोस्तों, कई यादें ऐसी भी होती हैं जो हमें सिखाती हैं कि खुशियां हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। कभी दोस्तों के साथ बांटी हुई टॉफी में, कभी गर्मी की छुट्टियों में, तो कभी दादी नानी की कहानियों में, और कभी रेडियो पर बजते किसी पुराने गीत में। शायद यही वजह है कि पुरानी यादें हमें सुकून देती हैं। वे हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। ये बताती हैं कि हम कौन थे और आज हम कौन हैं। हाँ, कुछ यादें दर्द भी देती हैं, पर वही दर्द हमें स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस बनाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई पुरानी याद आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो उससे भागिए मत। थोड़ी देर उस याद के साथ बैठिए, मुस्कुराइए और धन्यवाद कहिए उन पलों को जिन्होंने आपको आज का इंसान बनाया। यादें सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं होती, वे आने वाले कल की ताकत भी होती है। यादों की एक अजीब आदत होती है, ये बिना दस्तक दिए चली आती है। कभी होठों पर मुस्कान छोड़ जाती है, तो कभी आंखों को चुपके से भिगो जाती है। तो इस खूबसूरत चर्चा के बाद आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये गीत। गीतकार है मजरूह, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दोस्तों, अभी आपने सुना कुमार सानू की आवाज में ये गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं हमारे अगले क्रम इनसे मिलिए में, जहां आज आप सुनेंगे युवा वकील प्रियांशु पांडे से रागिनी चौबे की बातचीत।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रागिनी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा क्रम इनसे मिलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रम इनसे मिलिए में हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसे खास मेहमानों से जिन्होंने अपने क्षेत्र में ही बहुत कुछ हासिल किया है। तो आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही शख्स जिन्होंने लॉ के क्षेत्र में अपना नाम बनाया है। तो चलते हैं हमारे युवा वकील के पास और जानते हैं उनसे लॉ के बारे में कुछ बातें और उनकी जीवन से जुड़ी कुछ बातें।
4: हेलो, मेरा नाम प्रियांशु पांडे है और मैं शंकरगढ़ बलरामपुर, एक छोटा सा विलेज है, मैं वहाँ से रहता हूँ। मैंने अपने करियर की पढ़ाई वहीं गवर्नमेंट स्कूल से चालू की थी और मैंने आधे से ज़्यादा पढ़ाई गवर्नमेंट से ही की थी और मैंने लॉ पीजी कॉलेज अंबिकापुर से किया। 2022 में मैं पास आउट हुआ। इसके बाद 3 महीने मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया। इसके बाद मैं 2022 से कंटिन्यू 2026 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंबिकापुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रियांशु जी आपका हमारे इस क्रम इनसे मिलिए में। तो आपने बताया कि आप अंबिकापुर में ही लॉ की प्रैक्टिस 4 साल से कर रहे हैं।
4: जी,
3: तो लॉ फील्ड में जाने का जो इंस्पिरेशन है वो आपको कहाँ से मिला?
4: लॉ फील्ड बेसिक मेरे फैमिली में किसी ने लॉ किया नहीं है, तो मेरे फादर का मन था कि मेरे बेटे लॉ करे, तो मेरा शुरुआत में मन नहीं था, पर जैसे जैसे सब्जेक्ट आए, स्टडी आए, पढ़ाई आए, उसके बाद उस प्रोफेशनल को गया, मैं देखा तो मेरे को भी धीरे धीरे रुचि बढ़ते गए उसको। फिर मैं पढ़ते पढ़ते ज्वाइन किया कोर्ट और आज मेरा अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो रहा है और मजा आ रहा है। लॉ एक बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आपके भविष्य के लिए काफी अच्छे अच्छे फील्ड में जा सकते हैं, जज बन सकते हैं, ADPO बन सकते हैं और सबसे अच्छा बेस्ट लॉयर बन सकते हैं, बड़े लॉयर बन सकते हैं। इनकी इनकम का कोई लिमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसीलिए सबसे अच्छा है, बेस्ट प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस।
3: तो आप क्या चीज के लॉयर हैं?
4: मैं बेसिकली क्रिमिनल देखता हूँ और राजस्व के प्रकरण तथा लैंड संबंधित, मैं दोनों प्रकरण देखता हूँ। क्रिमिनल में प्रैक्टिस मेरा ठीक है।
3: तो आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं?
4: जी, मैं बिल्कुल।
3: तो आए दिन आपका जो सामना होते रहता है ऐसे लोगों से?
4: हाँ, ऐसे अपराधियों से होते रहता है, बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों से भी होता है, कई लोग झूठे फंस भी जाते हैं।
3: जी,
4: पहले शुरू में एजिटेशन था कि ऐसे बैठेंगे, डर लगता था, नहीं, पर अब ठीक है, अब उनको जानो, बात करो। कई लोग ऐसे हैं जो कुछ क्राइम नहीं किए हैं
3: तो भी
4: फंस गए हैं, अब क्या है कि उनको डिफेंस तो करना ही है और ये हमारा काम है, इथिक्स है हमारा, तो ये इनको करना।
3: तो एक लॉयर के रूप में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आप लोगों के लिए?
4: बेसिकली अगर लॉयर के लिए सबसे ज्यादा, अगर जूनियर के लिए बात करें, शुरू में आत्मरति सबसे ज्यादा दिक्कत रहता है कि अगर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली के मेंबर कोई एडवोकेट नहीं है तो आपको बेसिक जीरो से चालू करना पड़ता
3: जी,
4: है
3: जी।
4: और जीरो से चालू करने के लिए आपको सिखाने के लिए कोई सीनियर एडवोकेट एट द बैठ के नहीं सिखाएगा, काम करने ही आपको शार्प माइंड होकर ही काम करना पड़ेगा। इसलिए आपको शुरू में कोर्ट के, मेरे को लग रहा है लगभग 2-3 साल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आप 2-3 साल समझ लें, काम कर लें, प्रोसीजर

0: और सीख जा, फिर आप दिनों दिन इजी होते जाएंगे। फिर आप इसमें बस अपना डेली का पढ़ाई रूटीन केस की तैयारी वारी करके बस आपकी हैबिट अच्छी हो जाएगी।
1: तो लॉ की पढ़ाई के दौरान ऐसा कोई मोमेंट जो आपको आज भी याद हो?
0: हाँ, बेसिकली हम जब किए थे तो हमारा सेमिनार एक बार हाईकोर्ट साइड हुआ था, तो हम कभी अपेयर नहीं हुए, तो हाईकोर्ट में गए थे, वहाँ सीखने को मिली अच्छी, पहले बार देखी कि हाईकोर्ट में आर्ग्यूमेंट कैसे होते, ये कैसे होते, हम पीछे बैठ के बस सब नॉलेज कर रहे थे, तो वहाँ के एडवोकेट की मेहनत देखे तो समझ में आया कि नहीं एडवोकेट में बहुत मेहनत है, बहुत फैसिलिटी है, अच्छा लगता है। मतलब
1: तो कितना प्रैक्टिस करते हैं आप अपनी बातों को जज के सामने रखना, या सामने जो अपोजिशन में जो लॉयर है, आप में जो डिबेट होता है उसमें कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है अपनी बातों को सामने वालों के सामने व्यक्त करने में?
0: देखिए क्या है कि दो क्लाइंट रहते हैं, दो एडवोकेट रहते हैं, एडवोकेट कोर्ट के अंदर जरूर अपने अपने क्लाइंट के लिए प्रेजेंट करते हैं, बट कोर्ट के बाहर एज अ बेस्ट फ्रेंड रहते हैं हर एडवोकेट। नो डाउट कोर्ट के अंदर तू मैं सब हो जाते हैं, पाइल पटका पटकी, मतलब कमेंट बाजी सब हो जाते हैं, बट कोर्ट के बाहर निकलने के बाद दोनों दोस्त होते हैं। अब क्या कि बेसिकली रोज के रूटीन में आपको डेली केसेस केस पढ़ने पड़ेंगे, कुछ लेटेस्ट जजमेंट पढ़ने पड़ेंगे, ये सबको पढ़ के आपको कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा और अपने बातों को इतना अच्छे से रखना पड़ेगा और कई वर्डों को इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा जज को समझ में आए। अगर जज उस बात को नहीं समझेगा, नहीं करेगा, तो कोई मतलब नहीं, सब बेकार हो जाएगा। बट अगर जज समझ गया, जज सर कन्विंस हो गए, तब फिर आपका अच्छा है, बेटर है, गुड प्रैक्टिस है फिर।
1: तो आपका पहला एक्सपीरियंस कोर्ट रूम में कैसा था, मतलब आप एक्साइटेड थे या नर्वस थे?
0: बेसिकली बताया, मेरी फैमिली में कोई एडवोकेट ही था, मैं पहला बार गया था तो मेरा हार्ट बीट बहुत फाट था, मैं कैसे कन्विंस करूँ, क्या करूँ, कैसे बोलना है। अरे तो मैं पीछे पीछे चुपचाप खड़ा था, नीचे सर करके धीरे से देख रहा था और डरा हुआ था कि क्या है, कैसे है, कुछ बोल दे तो उनको फेस कैसे करूँ, कभी आइडिया था नहीं। अब तो एक्सपीरियंस हो गया, अब तो सब हो गया, तब दिक्कत नहीं होता, अब अच्छा जा रहा है।
1: तो आपकी ज़िंदगी का जो पहला केस था उसके लिए आप कितने एक्साइटेड थे और आपने वो केस हारा या आप जीते वो केस?
0: मेरे को पहला केस, एक अच्छा लीडिंग केस मेरे को एज अ मेरे थ्रू नहीं मिला था, एक सीनियर थे एचआर शर्मा, हृदय शर्मा सर थे, उन्होंने मेरे को बहुत बड़ा केस दिया था, पॉस्को का एक मैटर था रामानुजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जिसमें उसे कंफर्म था सजा होना ही था, बट वो मेरे को बैठे, कुछ समझाए, लीडिंग समझाए, फिर मैंने उस केस को लड़ा और उस केस को हम जीत गए, वो हो गया उसमें इक्विटल हो गया उसमें।
1: जी मतलब आपका जो पहला केस था वो आप जीत गए?
0: जी मैम, पहला केस जीता, बहुत बड़ा केस था मेरे लिए तो, क्योंकि पॉस्को करने बहुत ही वो बड़ा केस।
1: तो आपके लाइफ का कोई ऐसा केस आपने हैंडल किया हो जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा, मतलब आपने उससे बहुत कुछ सीखा हो या वो आपके लिए कोई लेसन दे के गया हो?
0: ऐसा नहीं बोला जाता, हर केस, हर दिन हर एक केस आपके डेली लेसन रहेगा। कई बार आपको ऐसे ऐसे सीनियर से भी करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, जिसके आप नाम सुन के खुश हो जाते हैं, अरे सर ये सर है, ये सर है।
1: जी जी,
0: तो कई बार ऐसा होता है, तो कुछ ना कुछ उनसे सीखते ही हैं कुछ, और प्रिपरेशन के बाद रोज ही करना पड़ता है। अब ऐसा कोई ऐसा तो स्पेशल डे नहीं रहता है कि आज ही खड़ा हुए, अगर आप किसी क्लाइंट को दे रहे हो तो आपको अपना 100% देना है वहाँ।
1: जी जी,
0: नो डाउट कि जजमेंट जो भी है, कभी फेवर आता है, कभी फेवर आता है, कोई दिक्कत नहीं, हारना जीतना एक अलग चीज रहता है, पर आप उसको 100% नहीं दोगे आप तो कैसे होगा। इसी के लिए डेली का अपना 100% क्लाइंट के लिए पूरा रहता है।
1: जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक क्लाइंट जो आप पे इतना भरोसा करते हैं उनको आप अपना 100% देते हैं ताकि उनका जो भरोसा है वो आप पे बना रहे। तो दोस्तों बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे प्रियांशु जी? आप
0: किशोर कुमार मेरे पसंदीदा गायक हैं, तो उन्हीं का कोई भी एक सॉन्ग अच्छा सा।
1: तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

0: एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का क्रम इनसे मिलिए में, जहां आज हमारे साथ हैं एक युवा वकील जिन्होंने अभी तक अपने जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की हैं। तो अब चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनसे और भी चीज़ें कोर्ट के बारे में, लोगों के बारे में और न्याय व्यवस्था के बारे में। तो प्रियांशु जी, अभी तक आपने बताया कि आप एक वकील कैसे बने और अभी तक आपने कौन कौन से केस हैंडल किए हैं। आज के समय में युवाओं को या आम लोगों को अपने किन किन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए या फिर उन्हें लॉ के बारे में कौन सी चीज़ें पता होनी ज़्यादा ज़रूरी हैं?
1: बेसिकली देखा जाए तो आजकल के जो सबसे ज़्यादा युवा हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ भी ऐसे ऐसे काम कर दे रहे हैं जो क्राइम में आते हैं।
0: जी,
1: ऐसा देखा जाए तो फोटो किसी का पोस्ट करना, लड़कियों का कुछ ऐसा करना, ये सब आईटी एक्ट के इसमें आते हैं। तो ऐसे मेन सबसे ज़्यादा दिक्कत है आजकल की सोशल मीडिया को देख के वैसा काम करना, जैसे चाकूबाजी हो गई, अंबिकापुर में चाकूबाजी बढ़ गए, ये बढ़ गए, रखना बढ़ गए। मैं नहीं चाहता कि मतलब आप ऐसा कार्य करो
0: जी।
1: आपको पता होना चाहिए क्राइम क्या है, नॉर्मल चीज़ क्या है। आजकल लोग क्राइम को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, एक अपना एक अलग ऑरा बनाना चाह रहे हैं, एकदम छोटे छोटे बच्चे ऐसे कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली चाहता हूँ कि ये सब कुछ ना करें, अपना नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा चीज़ है, आप सीखें, लर्निंग करें। बहुत नए नए चीज़ हैं प्लेटफॉर्म में जो आप सीख सकते हैं, यूट्यूब हो गए, ये हो गए। आप ऐसा काम क्या करना जिसमें पेरेंट्स को दिक्कत हो? आप तो करके चले जाते हैं बट आपके पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो मैं ऐसा करूँगा नए यंगों से कि आप समझे कि क्या क्राइम है और क्या नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों को। और बेसिकली आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप बिल्कुल आप थाना जाएं, अपने रिपोर्ट दर्ज कराएं। आपके साथ अकाउंट फ्रॉड हुआ है तो आप साइबर क्राइम जाएं, बिल्कुल रिपोर्ट दर्ज कराएं। कुछ भी आपको लगे तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाएं, और जहां नहीं हो पाए बिल्कुल किसी एडवोकेट से मिलिए, आप विधिक सलाह लीजिए, वो आपको एक अच्छा प्रेफर करेंगे।
0: जी, तो जैसे अभी आपने बताया कि आज जो हमारे युवा हैं वो ट्रेंड की वजह से ज़्यादातर अपराधों का शिकार हो रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों में दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: क्या बेसिकली ये 18 साल से कम रहते हैं इनमें किशोर न्यायालय में इनका केस चलता है, तो ये ज़्यादा ऐसा इनके लिए कड़क नियम नहीं है। बट क्या है कि इनके चक्कर में इनके परिजन तो परेशान होते हैं ना
0: जी।
1: तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ये कभी भी सोशल मीडिया को देख के अपना ऑरा बनाने की कोशिश करे या कुछ ऐसा गलत काम करे। ये अपनी स्टडी करे, कुछ अच्छा उस फील्ड में करे, नए नए चीज़ सीखे, खेलकूद में ध्यान दे। इतने अच्छे अंबिकापुर में अभी एट द प्रेजेंट अभी खेलो इंडिया चल रहा है
0: जी, जी।
1: उसमें प्रैक्टिस करे, साल भर कुछ करे, कुछ आगे युवा बढ़े, देश का कुछ भी कर सके, अपने माता पिता का देख दाख के नाम बढ़ाने का कोशिश करें, ऐसा काम करें जिससे उनको उनके परिजन खुश हो।
0: तो ऐसे यूथ जो कि लॉ फील्ड में ही जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ जज, एज अ लॉयर, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? वो कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे आगे बढ़ें?
1: बेसिकली 12th के बाद अगर लॉ करना तो 5 साल की कोर्स होती है, PLLB, BCom, LLB, ग्रेजुएशन के बाद भी होती है, प्लेन LLB होती है, इसे करना पड़ता है। बेसिक सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर आपको एज अ जजेस का तैयारी करना तो आप बेसिक शुरू से आप अच्छे से पढ़ाई करें
0: जी, जी।
1: आपको हर एक पॉइंट बेयर एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको हर एक चीज़ ध्यान से शुरू से ही देने पड़ेंगे। तो आप बेसिक चीज़ पढ़ेंगे, मेंस के लिए आप अच्छे तैयारी करें, आंसर जजमेंट करें, ये धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे आप करेंगे तो सब सीखते हैं। आप पढ़ते पढ़ते जब भी आपको छुट्टी मिले तो कई दिन कोर्ट में आप प्रैक्टिस करके देखें, आप समझें, जजेस से बात कर सकते हैं, जजेस भी आपको इतने अच्छे जजेस रहते हैं कि आपको हेल्प करते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं। एज अ स्टूडेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता ना कि आप जज से पर्सनल जाके मिल सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो।

0: कुछ भी हो तो वो और अच्छा वो करते हैं। मेरे कई सेमिनार होते हैं कॉलेज में, जजेस जिसमें आते हैं,
1: जी जी
0: टॉक टू टॉक चलते रहते हैं, स्टूडेंट के होते कि प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, कई जुडिशियल लेके रिलेटेड होते हैं। और लॉयर बनना तो लॉयर के लिए भी पढ़ाई तो ज़रूरी है, दोनों फील्ड के लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, लॉयर के लिए बल्कि और ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा, रोज़ आपको नए नए चीज़ों से फेस करने, कई ऐसे ऐसे नियम पढ़ने पड़ेंगे, कई कुछ करने पड़ेंगे, इसी के लिए पढ़ाई तो बहुत इसमें ज़रूरी रहता है।
1: तो जैसा कि आपने बताया कि आपका जो टाइम होता है, मान लीजिए किसी केस को स्टडी करने में निकल जाता है, तो खाली समय में खुद को रिलैक्स करने के लिए आप क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं रिलैक्स करने के लिए खेल तो क्रिकेट में अच्छा खेल लेता हूँ, फिर दोस्तों से हम बात करते हैं, चाय पे हम हमेशा बात करते रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, तो कहीं कहीं घूमने निकल जाते हैं आसपास, तो ऐसे करके माइंड फ्रेश होते रहता है।
1: जी, तो आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है कि मोबाइल फ़ोन छोड़कर आप क्रिकेट पर ध्यान देते हैं, अपने दोस्तों के साथ चाय पे चर्चा करते हैं, उनके साथ घूमने निकल जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, क्या है कि जितना आज के दिन में मोबाइल से दूर रहें उतना अच्छा है, बस मोबाइल अपने डेली यूज के लिए जो टॉक टू टॉक हो, हल्का फुल्का हो, ये कम यूज़ हो मोबाइल, तो ज़्यादा बेटर रहेगा लाइफ के लिए।
1: जी, तो आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी बातें हमने आपसे की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमसे बातचीत की।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये क्रम बस यहीं तक। आज के इस क्रम से मुझे यानी अपनी दोस्त रागिनी चौबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

दोस्तों, क्रम इनसे मिलिए में आपने सुना युवा वकील प्रियांशु पांडे से रागिनी चौबे की बातचीत। आइए सुनते हैं बेनी दयाल की आवाज में फिल्म टू स्टेट्स का ये गीत। शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

दोस्तों अभी आपने सुना बेनी दयाल की आवाज में फिल्म टू स्टेट्स का ये गीत। इसी के साथ वक्त हो चला है दोस्तों आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते आपको बता देते हैं कल की वाणी के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पर और गजलों पर आधारित क्रम महफिल। इसी के साथ आज की वाणी से दीजिए इजाजत। आपकी दोस्त शालिनी चौबे को नमस्कार।

0: युवा श्रोताओं के लिए अभी युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं समाचार। अगले कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्य सत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। विषय है जिम्मेदारी और कदाचार। संकलन और वाचन गोपेश पांडे का है।
3: जिम्मेदारी और कदाचार, ये दोनों शब्द सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन जीवन, समाज और राष्ट्र की दिशा तय करने में इनका गहरा संबंध है। जिम्मेदारी का मतलब है किसी काम या कर्तव्य को निष्ठा और ईमानदारी से निभाना। जब हम कोई कार्य स्वीकार करते हैं तो उसके अच्छे बुरे परिणामों के लिए भी हम उत्तरदायी होते हैं। यदि हम जिम्मेदारी के पहलुओं की बात करें तो इसका सबसे पहला पहलू है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यानी अपने जीवन, स्वास्थ्य और परिवार की देखभाल। इसका दूसरा पहलू है सामाजिक जिम्मेदारी, समाज में सहयोग और सद्भावना बनाए रखना। तीसरा पहलू है व्यवसायिक, यानी अपने कार्य क्षेत्र और संगठन के प्रति निष्ठा। इसका चौथा पहलू है नैतिक जिम्मेदारी, यानी सत्य, न्याय और ईमानदारी का पालन करना। और इसका आखिरी पहलू है कानूनी जिम्मेदारी, अर्थात देश के कानूनों का पालन करना। जिम्मेदारी निभाने से व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, समाज में अनुशासन और विश्वास बनता है, साथ ही संगठन और राष्ट्र का विकास होता है। जिम्मेदार व्यक्ति को हमेशा प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है। इसके विपरीत कदाचार, कदाचार का मतलब है गलत, अनैतिक या अनुचित आचरण। जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ता है या अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है तो वह कदाचार करता है। कदाचार के कई रूप होते हैं, जैसे नैतिक कदाचार, इसका मतलब होता है झूठ, धोखा या भ्रष्टाचार करना। व्यवसायिक कदाचार, इसका मतलब होता है लापरवाही, रिश्वतखोरी और गबन। अशांति फैलाना, समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल रहना, यह सामाजिक कदाचार का उदाहरण है। जबकि कोई

0: अपराध करता है, हिंसा करता है या फिर कानून तोड़ता है तो इसे कानूनी कदाचार कहा जाता है। कदाचार करने वाला व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, साथ ही संगठन में उसकी छवि खराब हो जाती है, समाज में भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ता है जिससे राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है। जिम्मेदारी और कदाचार दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जिम्मेदारी निभाने वाला समाज का आदर्श बनता है, जबकि कदाचार करने वाला व्यक्ति अपने साथ साथ समाज और राष्ट्र को भी नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जिम्मेदारी निभाए तो वह मरीज की जान बचाता है, लेकिन यदि वह कदाचार करे, जैसे गलत इलाज या दवाओं में मिलावट, तो वह जीवन भी नष्ट कर सकता है। नैतिक शिक्षा और संस्कार जिम्मेदारी निभाने के प्रमुख उपाय हैं। साथ ही कार्यस्थल पर पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन के साथ अगर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वह जिम्मेदार व्यक्ति कहलाता है। आत्मचिंतन और कर्तव्य निष्ठा एक जिम्मेदार व्यक्ति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। यदि समाज में सख्त कानून और दंड की व्यवस्था हो जाए तो कदाचार रुक जाता है, साथ ही भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता भी कदाचार को रोकने का एक प्रमुख उपाय है। यदि प्रशासन पारदर्शी हो जाए तो कदाचार रुक जाएगा, साथ ही यदि जिम्मेदार नागरिकों को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाए तो वह भी अपना कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से और नियम पूर्वक करेगा। जिम्मेदारी और कदाचार ये जीवन के दो विपरीत रास्ते हैं। जिम्मेदारी निभाने से व्यक्ति और समाज दोनों आगे बढ़ते हैं, जबकि कदाचार से अराजकता और विनाश फैलता है। आज जरूरत है कि हम सभी अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाएं और कदाचार से दूर रहें। जब हम जिम्मेदार बनेंगे तभी समाज और राष्ट्र मजबूत बनेगा।
1: जिम्मेदारी और कदाचार, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु। संकलन और वाचन स्वर गोपेश पांडे का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मिनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। भारतीय रेल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबा चांपा कोरबा तीसरा रेल लाइन परियोजना ला दे है मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री है खरीफ सीजन पर कमती वर्षा वाले जिला में तैयारी पूरा करे के दिन निर्देश। और कोरिया जिला के नवगाई गांव में रेत खनन ला लेके हुए विवाद में भाजपा नेता के मौत हो गए, उन्हें 3 आने घायल हैं। अब समाचार विस्तार ले। भारतीय रेल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबा चांपा कोरबा तीसरा रेल लाइन परियोजना ला करीबन 755 करोड़ रुपया के अनुमानित लागत ला मंजूरी दे है। ये परियोजना मा चांपा और कोरबा के बीच तीसरा रेल लाइन बनाई जाही, जेमा पहली ले मंजूर मड़वारानी सरक बुंदिया खंड ला शामिल नहीं करे गए है। ये रेल गलियारा भारतीय रेल के मिशन 3000 मीट्रिक टन और उच्च घनत्व नेटवर्क कॉरिडोर के तहत बनी, जेखर उद्देश्य माल ढुलाई ला मजबूत करना और देश के बाढ़त ऊर्जा जरूरत ला पूरा करे मा मदद करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चापा कोरबा तीसर रेल लाइन परियोजना ला मंजूरी दे जाए मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर आभार जतन है। उमन किहिन की ये परियोजना छत्तीसगढ़ के विकास और औद्योगिक बढ़वार, देश के ऊर्जा सुरक्षा ला मजबूत बनाए के दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हर है। श्री साय किहिन की चापा कोरबा रेलखंड SECL और MCL के खदान ला राष्ट्रीय रेल नेटवर्क ले जोड़िया एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये परियोजना के पूरा होए ले कोयला लाने लेगे के क्षमता में बढ़वार हो ही। मुख्यमंत्री किहिन की बने रेल संपर्क ले उद्योग ला मजबूती मिल ही, व्यापार के बढ़वार के संग रोजगार के नवा मौका मिल ही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है काली नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि बैठका में खरीफ सीजन पर देश भर में करेंगे तैयारी के समीक्षा करी। बैठका में श्री चौहान है कमती वर्षा वाले जिला पर पहली ले योजना ला तैयार करे में जोर दीन। बैठका में ये बात में

ध्यान केंद्रित करेगीस कि फसल के मौसम के दौरान पैदा होवैया प्रतिकूल मौसम स्थिति ले किसानी और किसान के सुरक्षा बर सबो जरूरी कदम पहली ले उठाए जाए। ओमन कहिन कि जौन जिला में कमती वर्षा या फिर असमान वर्षा के संभावना हवे वहाँ बेरा रहत तैयारी होना चाहिए। अवैया 21 जून के मनाए जाने वाला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ल लेके छत्तीसगढ़ में तैयारी आखिरी चरण में हवे। सामान्य प्रशासन विभाग कोती ले जिला मुख्यालय में होवैया सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम पर माई पहुना के नाव तय कर दे गए है। राज्यपाल रमेंडे का राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में माई पहुना हुई। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आतिथ्य में सरगुजा जिला में बिहनिया 7 बजे सामूहिक योग करे जाही। ये कार्यक्रम के अगुवाई मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करही। एक संगे संग केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुरुक, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में राखे गए कार्यक्रम में माई पहुना रही। इसने आने जिला में होवैया योग कार्यक्रम में मंत्री सांसद और विधायक अतिथि के रूप में संघ रही। ऐसो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम हरे स्वस्थ आयु के लिए योग ये राखे गए है। कोरिया जिला के नौगाई गांव में रेत खनन लेके हुए विवाद में भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह के मौत हो गई। उन्हें 3 आने घायल हो गए हैं। खबर के मुताबिक भाजपा नेता अपन कुछ एक संगी मनसंग पाछू रतिया सोनहत गे रहीन। इही दौरान नौगाई गांव में कुछ एक लोगन मन उखर गाड़ी ला रोक के तोड़ फोड़ करत आगी लगा दीन। ये दौरान भाजपा नेता गाड़ी ले निकल नहीं पाइन और जल के उखर मौत हो गई। ये घटना में 3 आने मनखे घायल हुए हैं जो मल्ला अंबिकापुर के अस्पताल में भर्ती कराए गए है। पुलिस ये मामला में 9 जिन के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करे है जिमले 4 जिन आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गए है। पुलिस आने आरोपी मन के तलाश करत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय है बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपीला राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA में IG नियुक्त करे है। सुंदर राजपी पाछू करीबन 8 बछर ले बस्तर में पदस्थ रहे हैं। ओमन कतको नक्सल विरोधी अभियान के अगुवाई करी है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगु बढ़बो बांचे समाचार कोती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है अवैया नीट परीक्षा ला देखत विद्यार्थी और परिवार वाले मन ला गड़बड़ी करैया मन ले सतर्क रहे के अनुरोध करीन है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह कहिन कि हम ये सुनिश्चित करबो कि परीक्षा बिना कोनो गड़बड़ी के पूरा होवे। खबर के मुताबिक 21 जून के तय नीट UG के पुनर्परीक्षा ला देखत सरकार है 22 जून तक टेलीग्राम ऐप मा ऑनलाइन संदेश भेजे मा रोक लगा दे है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल है राज्य में अवैध रूप ले स्क्रैप और ओमा बौरे बैटरी के संग्रहण भंडारण परिवहन पुनर्चक्रण और व्यापार में जुड़े मनखे और संस्था के खिलाफ कार्रवाई के चेतावनी दे है। मंडल के संज्ञान में आए हैं कि राज्य के कुछ एक क्षेत्र में बिना पंजीयन स्क्रैप बैटरी के खरीदी बिक्री करे जाते। मंडल है स्पष्ट करे है कि ऐसन किस्म के काम पर्यावरण कानून के उल्लंघन है और लोगन के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा करते। राज्यपाल रमेंडे का है रायपुर के कमल विहार के गजराज बांध ला जलाशय के रूप में विकसित करे के पहल करीन है। ये बांध करीबन 230 एकड़ क्षेत्र में फैले है। इस संबंध में राज्यपाल है आज लोक भवन में रायपुर नगर निगम महापौर मीनल चौबे और अतिरिक्त कमिश्नर विनोद पांडे ले गोट बात करीन। राज्यपाल है कहीन के गजराज बांध ला पेयजल भंडार के रूप में बनाए ले रायपुर शहर ला शुद्ध और पर्याप्त पानी मिली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई और फ्रांस के इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नॉर्ड यूरोप के बीच डुअल ज्वाइंट डिग्री समझौता में दस्तखत करे गए है। ये समझौता फ्रांस के नीस शहर में 14 ले 16 जून के बीच रखे गए भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के दौरान हुई। ये समझौता ले दोनों संस्थान के विद्यार्थी मल्ला एकीकृत शैक्षणिक कार्यक्रम ले भारत और फ्रांस में अध्ययन के मौका मिली। छात्र IIT भिलाई और इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नॉर्ड यूरोप दोनों कोतिले मान्यता मिले डिग्री ले सकी।
बिजली के दर में करेगे बढ़वार के विरोध में कांग्रेस आज प्रदेश के सबो जिला में बिजली विभाग के घेराव करीन। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मन रायपुर के डगनिया के विद्युत विभाग कार्यालय के घेराव करके बिजली के दर में हुए बढ़वार, बढ़त महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई

0: गैस के कीमत में बढ़वार ल लेके सरकार के खिलाफ नाराबाजी करीन। जांजगीर में कार्यकर्ता मन रैली निकालीन, उहे बिलासपुर में बिजली विभाग के घेराव करीन। ये दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमा झटकी घलो हुई। कांग्रेसकारी 18 जून के सबो जिला में पत्रकार वार्ता राख के बिजली के दाम में करेगे बढ़वार के विरोध करही। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश कोतिले 19 साल की भर्ती परीक्षा पास करके रिकॉर्ड बनैया चारू पांडे ले लेगे भेंटवार्ता के प्रसारण काली 18 जून के करे जाही। एकर प्रसारण रतिहा 8:15 ले 8:30 तक सुने जा सकत है। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। जसपुर जिला में बीज गोला बनाबो, जसपुर के जंगल ला बढ़ाबो महाअभियान के शुरुआत करे जाते। एमा काली 18 जून के जिला के भैरव पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी समेत चिन्हा करेगे जगह मा एक दिन मा करीबन 2,00,000 सीड बॉल तैयार करे के लक्ष्य रखेगे है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। भारतीय रेल है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 42 किलोमीटर लंबा चांपा कोरबा तीसर रेल लाइन परियोजना ला देहे मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री है खरीफ सीजन पर कमती वर्षा वाले जिला में तैयारी पूरा करे के दिन निर्देश। और कोरिया जिला के नौगाई गांव में रेत खनन ला लेके हुए विवाद में भाजपा नेता के मौत हो गए, उन्हें 3 आने घायल हैं। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।
2: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। ये वक्त है लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ सरगुजिया लोकगीत। पहले सुनिए बिंदु दास और साथियों का गाया ये बायर गीत।

0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आइए सुनते हैं रामाधार और साथियों का गाया ये किसुन खेल कर्मा गीत।

रामाधार और साथियों के गए इस सरगुजिया लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब आप हमारे मीडियम वेव पर आईसीसी T20 महिला विश्व कप के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंगले लीड्स में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे। एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है शागिर्द।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म जंजीर से। आवाज है आशा भोसले की, गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

बात भी बच्चों मारो ता।

माधुरी कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत, जो है कवि प्रदीप का लिखा हुआ। संगीत ओपी नैयर ने तैयार किया है, आवाज मुकेश की, और फिल्म का नाम संबंध।

0: मुकेश के गए फिल्म संबंध के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: आईसीसी महिला टी20

0: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक,

0: हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय रेल ने चापा कोरबा तीसरी रेललाइन परियोजना को दी मंजूरी। कोरिया जिले में रेत खनन विवाद को लेकर हुए हमले में भाजपा नेता सहित 3 लोगों की मौत। बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया प्रदर्शन। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में होंगे सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेल ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 42 किलोमीटर लंबी चापा कोरबा तीसरी रेललाइन परियोजना को लगभग 755 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के अंतर्गत चापा और कोरबा के बीच तीसरी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहले से स्वीकृत मड़वारानी सड़क बूंदिया खंड को शामिल नहीं किया गया है। ये रेल गलियारा भारतीय रेल के मिशन 3000 मीट्रिक टन और उच्च घनत्व नेटवर्क कॉरिडोर के तहत बनेगा, जिसका उद्देश्य माल ढुलाई को दृढ़ करना तथा देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चापा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ के विकास, औद्योगिक प्रगति और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कोरिया जिले के नौगई गांव में रेत खनन को लेकर हुए विवाद में भाजपा नेता भरत सिंह गहरवार उर्फ लल्ला सिंह सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा नेता अपने कुछ साथियों के साथ बीती रात सोनहत गए थे। इसी दौरान नौगई गांव में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोककर उसमें तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। इस दौरान भाजपा नेता गाड़ी से निकल नहीं पाए और जलकर उनकी मौत हो गई। इस घटना में गंभीर रूप से झुलसे 3 व्यक्तियों को अंबिकापुर के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की मौत रायपुर लाते समय हुई है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है, जिनमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने सूरजपुर प्रवास के दौरान शिवनंदनपुर नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। गौरतलब है कि 21 जून को निर्धारित नीट UG की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। इधर नीट परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आज रायपुर, दुर्ग सहित विभिन्न जिलों में कलेक्टरों ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिजली दफ्तर का घेराव किया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने रायपुर के डगनिया स्थित विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव कर बिजली की दरों में की गई वृद्धि, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल तथा रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जांजगीर में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और बिजली दफ्तर के मुख्य गेट पर नारेबाजी की। वहीं बिलासपुर में भी बिजली दफ्तर का

0: घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथियों के नाम तय कर दिए गए हैं। राज्यपाल रमन डे का राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। राज्यपाल रमन डेका ने रायपुर के कमल विहार स्थित गजराज बांध को जलाशय के रूप में विकसित करने की पहल की है। ये बांध लगभग 230 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस संबंध में राज्यपाल ने आज लोकभवन में रायपुर नगर निगम के महापौर मीनल चौबे और अतिरिक्त कमिश्नर विनोद पांडे से चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि गजराज बांध को पेयजल भंडार के रूप में विकसित करने से रायपुर शहर को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। राज्यपाल ने महापौर से संबंधित विभाग के अधिकारियों साथ समन्वय कर इस दिशा में कार्य करने को कहा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई और फ्रांस के इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नार्ड यूरोप के बीच डुअल ज्वाइंट डिग्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता फ्रांस के नीस शहर में 14 से 16 जून के बीच आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के दौरान हुआ। डुअल ज्वाइंट डिग्री समझौते के तहत दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों को एकीकृत शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और फ्रांस में अध्ययन का अवसर मिलेगा। छात्र IIT भिलाई तथा इंस्टीट्यूट माइंस टेलीकॉम नॉर्ड यूरोप दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्रियां अर्जित कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA में IG नियुक्त किया है। सुंदरराज पी बीते करीब 8 वर्षों से बस्तर में पदस्थ रहे हैं। उन्होंने अनेक नक्सल विरोधी अभियानों का सफल नेतृत्व किया है। जशपुर जिले में बीज गोला बनाबो जशपुर के जंगल्ला बढ़ाबो महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत कल 18 जून को जिले के भैरव पहाड़, सोगड़ा, नुमान टेकरी सहित विभिन्न चिन्हांकित स्थलों पर एक ही दिन में लगभग 2 लाख सीड बॉल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन और वन विभाग ने सभी नागरिकों, प्रबुद्धजनों और युवाओं से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से लिए गए साक्षात्कार का प्रसारण कल 18 जून को किया जाएगा। इस विशेष भेंटवार्ता को रात 8:15 से 8:30 तक सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। सड़कों पर मवेशी छोड़ने की बढ़ती समस्या को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि सड़क, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर विचरण करते पाए जाने वाले गौवंशीय और भैंस वंशीय पशुओं को स्थायी रूप से जब्त किया जाएगा। जिला प्रशासन ने पशुपालकों, डेयरी संचालकों और किसानों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को घर या निर्धारित स्थान पर ही रखें और सड़कों पर न छोड़ें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा कल 18 जून को सुबह 11 बजे दुर्ग जिला मुख्यालय स्थित बाल गृह परिसर में महिलाओं के मामलों के निराकरण के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रायपुर रेलमंडल के उरकुरा

0: रायपुर डाउन लाइन पर खमतराई स्थित संपार फाटक आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण आज सुबह से लेकर 19 जून की रात 10 बजे तक बंद रहेगा। जांजगीर चांपा जिले के बिरकोनी गांव में एक युवक ने अपने दो बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। नारायणपुर जिले में बीएसएफ की टीम ने विशेष सर्च अभियान के दौरान मसपुर गुडरापाल के जंगल में माओवादियों द्वारा डंप किए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। इनमें बीजीएल लॉन्चर और राइफल शामिल है। और जांजगीर में राइस मिल से धान की चोरी करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रेल ने चांपा कोरबा तीसरी रेल लाइन परियोजना को दी मंजूरी। कोरिया जिले में रेत खनन विवाद को लेकर हुए हमले में भाजपा नेता सहित 3 लोगों की मौत। बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में किया प्रदर्शन। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में होंगे सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आप ICC T20 महिला विश्व कप क्रिकेट के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंग्ले ग्लेट्स में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज पर सुन सकते हैं। FM बैंड और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले जानिए हमारी इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। चौपाल कार्यक्रम शाम 7:20 पर। आज इस कार्यक्रम में मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना पर चर्चा की जाएगी। क्रम आजकल में ग्रामीण श्रोताओं को हरा चारा उत्पादन विधियां और उसके लाभ, इसके साथ ही कस्टम हायरिंग सिस्टम पर जानकारी दी जाएगी। अनाजों से समृद्धि, पोषक अनाजों की वापसी, इन सारे विषयों पर आज विस्तार से ग्रामीण श्रोताओं के साथ चर्चा की जाएगी। इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम होगा रात 8:00। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे रात 9:15 पर। कार्यक्रम चर्चा का विषय है रात 9:30 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम आपके लिए पेश करेंगे रात 10:00 और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन होगा 10:30 पर। ये तो थे हमारी इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम।

और आइए हम आपको बता दें अपने कल के कुछ एक कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विचार बिंदु कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 6:30 पर। रामचरित मानस का गायन हम आपको सुनवाएंगे 6:35 पर। मुख्य गायन स्वर रविन्द्र साठे और मिताली सिंह का है। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया। खेती की बात में ग्रामीण किसानों को कुछ सामूहिक सुझाव दिए जाएंगे। समय होगा सुबह 6:45। गूंजी जंगल कार्यक्रम में सुबह 7 और गोधूली में शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कुछ सरगुजिया लोकगीत। नमस्कार सरगुजा, ये कार्यक्रम हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:30 पर। माटी के आखिर कार्यक्रम होगा सुबह 8:30 पर, सुनना ना भूलें। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम

आपकी पसंद आपके लिए पेश करेंगे सुबह 11:05 पर। प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाएंगे दिन में 12 बजे। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन आपके लिए पेश करेंगे दिन में 12:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन होगा दिन में 1:10 पर, जिसमें बहनें सुनेंगी घर के भोजन में सेहत का खजाना और क्रम गुलदस्ता। ईमेल की गूंज हम आपके लिए पेश करेंगे दोपहर 1:40 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा हम आपके लिए पेश करेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी रोजाना की तरह शाम 5:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी होगा शाम 6:30 पर, रजनीगंधा शाम 7:05 पर। कल चौपाल में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम, इस विषय पर चर्चा। किसानवाड़ी के अंतर्गत सामयिक फूल उत्पादन से आर्थिक लाभ और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इन विषयों पर श्रोताओं से चर्चा की जाएगी। कल रात 8:15 पर 19 शासकीय भर्ती परीक्षाएं पास कर अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाली चारू पांडे से विशेष भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी और इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। ये तो थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ एक कार्यक्रम। एफएम बैंड 100.2 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं और ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मिताली सिंह की आवाज में यह गजल, कलाम है इब्राहिम अश्क का। बाकी ही क्या रहा है तुझे मांगने के बाद, बस एक दुआ में छूट गए हर दुआ से हम।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। आवाज है चित्रा सिंह की और शायर हैं मदन पाल। दिल के रिश्ते अजीब रिश्ते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नासिर काजमी की लिखी गजल, आवाज है गुलाम अली की। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। लीजिए पेश है रजनीगंधा कार्यक्रम की ये आखिरी गजल, कलाम नासिर काजमी का।

गुलाम अली की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त हुआ। एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर। शाम के 7:20 होने वाले हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल।

भूत कर दीन और तुहर संगता तेजई कर प्रणाम जय जोहार और स्वागत हमारे कार्यक्रम में। देखिए आज जो कार्यक्रम हमन भूत कर दीन लाई ही, एक तो भाई बहनी मनला आज कर कार्यक्रम हमन समर्पित करती कोशिश करती कि आज भूत कर दीन हमारे जो महिला कृषक बहनी मना है उनला ये कार्यक्रम ला समर्पित करी और कैसे कि भाई देखिए प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना जैसे योजना पर वोट करब और डॉक्टर तृप्ति वर्मा है जो महिला स्व सहायता समूह कैसे सशक्त बनत है कैसे सशक्त बहनी मनला बनात है ये विषय पर गोट करीना है तो इला भी सुनब और बहनी मन सुनी तो ये कार्यक्रम में अपन अपन समूह में जो बहनी मन समूह चलाते हैं केकस वो समूह ला और सुदृढ़ बनाना है केकस जो बहनी मन में नहीं जुड़ी है ओमन इला समझी सुनी और कैसे इमें जोड़ के अपन विकास कर सकते हैं ओला भी समझी। तो लेकिन सबले पहली प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना बहनी हो देखिए जो हमारे किसान भैया बहनी मन है ओमन जानते कि जो खेती किसानी करवैया हमारे बहनी मना है ओमन ला भाई बगरा काम हो जाते अब देखिए जैसे मानसून कर भाई दस्तक हुईस और तो ये फटाफट खेती पाती कर काम है शुरू हो गई लेकिन ओकर पहले भी अभी जैसे जो धान कर काम नहीं शुरू करे रही तो भाई सब्जी रही ओकर काम करत रहीन और अभी तो कद्दू वर्गी सब्जी कर बढ़िया सीजन भी है तो अब देखिए एकर साथे साथ ये तरफ मानसून कर भाई आता है दस्तक हुए सा है ये तरफ लड़का मन कर स्कूल हर खुल गई तो मैंने अब देखी दोनों कति बहनी मल्ला फटाफट अपन काम ला सब संवारना करना है और साथ ही साथ में सब तरफ सहयोग करना है और कहीं कहीं तो भाई मुख्य भूमिका में भी रहना है। ऐसा में जो हमारे गर्भवती बहनी मन रहते हैं उमर कर संपूर्ण पोषण कैसे हो उमर कर बढ़िया से तिहा कैसे हो तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना एक ठी बहुत बढ़िया योजना है।

सरकार कर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित और ये जो चलता है बहुत कल्याणकारी मातृत्व लाभ योजना है। एक तहत गर्भवती बहनी मल्ला और धात्री बहनी मल्ला 1100 तक कर वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाता में ट्रांसफर करके मल्ला दहल जाते। एकर मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के नुकसान और आर्थिक भरपाई करना और मां कर पोषण स्तर में सुधार करना है। देखिए योजना के तहत मिले वाला जो वित्तीय सहायता है मिशन शक्ति कर नया नियम के अनुसार माने 0.2 का देवा ओला शुरू हुई से है कि सहायता राशि दो भाग में बांटल गई से। पहला संतान के जन्म में ये राशि दो किस्त में मिलते। पहला किस्त होते जो गर्भावस्था कर जल्द पंजीकरण कराने में कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच जो कराते हैं ओकर ऊपर मिल जाते। दूसरा किस्त जो है लैका मन कर जन्म कर पंजीकरण हुए और नवजात कर टीकाकरण कर पहला चक्र जैसे DPT कर जो सब टीका लगवाते हैं वो कार्ड बनवाए रहते एकर जो सब ओकर जो टीकाकरण कर कार्यक्रम चलत रही चक्र चलत रही ओकर समय में। दूसर संतान बालिका बेटी होए में बालिका मन कर जमला बढ़ावा दे खातिर और लिंगानुपात में सुधार खातिर दूसरा संतान लड़की होए में जन्म कर बाद एक मुश्त 6000 कर राशि देहल जाते। एक अतिरिक्त संस्थागत प्रसव जैसे अस्पताल में डिलीवरी होए में लाभार्थी महिला ला जननी सुरक्षा योजना के तहत भी प्रोत्साहन राशि एमे भेटाते। जो हमार बहनी मन है पात्रताओं मन कर का होना चाहिए जो भाई राशिला झोंकी राशिला पाही देश कर सभी गर्भवती और स्तनपान कराए वाला माता मन योजना कर पात्र है। अपात्र महिला है केंद्र और राज्य सरकार चाहे कोई सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम में जैसे PSU में नियमित रूप से कार्यरत महिला मन ये योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आवेदन खातिर महिला मन जो है ओकर पति कर आधार कार्ड अपन आधार कार्ड बैंक पासबुक आधार से लिंक जो होते मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड और अपन मोबाइल नंबर ला देके चाहे आंगनबाड़ी केंद्र में जाके ये अपन पूरा पंजीयन कराए सकते हैं। ऑफलाइन भी एक माध्यम आंगनबाड़ी से है और ऑनलाइन माध्यम से महिला बाल विकास मंत्रालय कर आधिकारिक जो वेबसाइट है उसमें जाके और मोबाइल ऐप कर माध्यम से भी ये में कर सकते हैं। तो भैया बहनियों ये जो योजना है इला लाभ जरूर लेना चाहिए। भैया मन ला ये मन कहता हूँ कि जे मन कर घर में बहनी मन भाई गर्भवती हैं चाहे जेकरे घर में बहनी मन स्तनपान कराता है धात्री माता है तो चटी ग्रौरे भी ध्यान दी और भाई अपन अपन घर कर जो महिला मन है उमल्ला सुरक्षित प्रसव स्वस्थ शिशु स्वस्थ माता कर खातिर प्रोत्साहित करी। अब किसान भैया बहनियों आज जो दिन है ये आज दिन है 17 तारीख जून कर महीना है और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस आज कर दिन हम मनाती। देखिए जैसे जेठ कर महीना चगीस अब तो भाई दू जेठ होइस काहे कि ये साल हमन एक ठी अधिमास हो पड़ीस तो पुरुषोत्तम मास ला भी हमन इला करें जैसे हमार हिंदी माँ हमें हमन देख थी। तो अब देखिए आज जैसे हमन जो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाते ही हर साल 17 जून के दिन इला मनाती इला वैश्विक स्तर पर मनाते। अब जैसे गर्मी कर दिन आते ना तो एक ठी चिंता कर लकीर सब कर माथा में हो जाते ये पानी हर अटा आता है रे पानी हर अटा आता है रे। बछर भर हमने कोशिश कर थी कि केकस बरखा कर जल्ला संजोई सवारी सुरक्षित रखी लेकिन का होते भैया बहनी हो जितना हमार प्रयास है वो कहीं ना कहीं चटी कम होता है चटी ना कहना है ज्यादा कम होता है। अब जैसा प्रयास हमला करना चाहिए जैसे सरकार का जो कहना है कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए हर घर में जो पानी कर सुरक्षित संरक्षित करे वाला तरीका है वो अपनाल जाए नवा घर हो चाहे बनाता है चाहे कहाँ कैसे घर है वो में भाई ये सिस्टम ला बनाए सकते हैं कर सकते हैं। तो देखिए हर जो एक उद्देश्य है कहीं ना कहीं पानी ला संजोना धरती में जो वाटर लेवल कम होगी सह ओला बढ़िया करना। अब आज कर दिन कर मुख्य उद्देश्य में देखिए तो भूमि क्षरण मरुस्थलीकरण रोके भर और सूखा की समस्या से निपटे कर उपाय कर प्रति लोग मिला जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस याद दिलाते कि सही प्रयास नीतिगत निर्णय और जन भागीदारी ले बंजर हो धरती फिर से उपजाऊ बना जा सकता है। देखिए जन भागीदारी हर बहुत बड़ा शब्द है कैसे कि हमन अगर सोचबो कि कोनो काम ला भाई सरकार कर राखी हमन ला का है हम तो बैठे बैठे होकर लाभ लेबो तो ऐसा नहीं होए भैया बहनी हो। सब काम ला हमन ला अपन कर्तव्य मान के अपन ओला आवश्यक मान के अपन अपन हिस्सेदारी ला जरूर करना चाहिए।

अब देखिए 2026 का जो थीम है, चारागाह पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें। अब देखिए लगातार जैसे जैसे हमन देखता है कांक्रीट कर जंगल बिछता है चारों कति, पानी कहाँ ले पैसे, पैसे कर जगह नहीं है, साथ ही साथ पशु मन कर चारागाह हर टूट रहता है, कम होता है, खत्म होता है। अब ऐसा स्थिति में लगातार यही प्रयास कर जाता है कि केकस भाई पशु पक्षी मन कर जो स्थान है ओला बिना माने ओला बिना टच किए, बिना ओला डिस्टर्ब किए कैसे करना है कि ओला फिर से पुनर्स्थापित करना है, ओला सम्मान करना है। कि हमन का जंगल कति पै जात हन, अभी कभी कभी हमन देखती कि कहूँ कहूँ भाई अभी ऐसा जगह भी कोनो कोनो मन छेक लेन है, वो में खेती पाती करते हैं रहते हैं, जेमें भाई वो सरकार है जंगल घोषित करी से, जंगल रही पहले, अब कैसे करीन काट दहीन कैसे करीन, तो आप कभी हाथी आई चाहे कहीं कुछ होते तो कहले हो जाते कि भाई यो जग तो रहत रहीन, लेकिन कैसे हाथी पैसी सा, हाथी को तो रास्ता रहेल भाई, हाथी और जानेल पीढ़ी दर पीढ़ी हाथी कर मस्तिष्क में रास्ता हर एकदम संजोए जाते। तो हाथी हथनी हर जब गर्भावस्था में भी रहते तो जोन रास्ता हर उमन कर आए जाए कर रहे तो भाई गर्भस्थ शिशु भी वो रास्ता ला चीन पहचान जाते। तो अब यही बात है भैया बहनियों कि हमला जो चारागाह है पशु मन कर ओला चीनना है, पहचान करना है और सम पुनर्स्थापित करे कर भरसक प्रयास करना है। पृथ्वी कर भूमि कर सत्ता कर आधा से अधिक हिस्सा में जो है चारागार से ढकल है। एक क्षेत्र दुनिया भर में करीब 2 अरब लोगला और 70% मवेशी मनला भोजन और आजीविका कर मुख्य आधार है। अब देखिए एक जो भारत में कर का प्रयास करल जाते हैं, भूमि बहाली कर लक्ष्य है भारत 2030 तक 206 करोड़ से मैंने 26 मिलियन हेक्टर जो खराब हो चुके भूमि होकर बहाल करे कर लक्ष्य रखी से है। अब सब में इमें अब एक एक पेड़ माँ का नाम, ये बहुत बड़ा अभियान है देशव्यापी हर क्षेत्र बढ़ावा दे खातिर। लगातार सरकार भी और खुद हमारे प्रधानमंत्री भी इला सिफारिश करें कि भाई सब जन भावनात्मक रूप से माता कर साथ जुड़ाव सब कर साथ रहते, तो अपन अपन माँ के नाम से चाहे जीवित हैं चाहे भाई नहीं हैं तो उमन कर नाम से एक एक ठी पेड़ लगाना है। रिकॉर्ड भाई एक ठी बनीस भी बढ़िया कि सब जन बढ़िया पेड़ों लगाइन और बहुत बगरा पेड़ रोपल गईस, लेकिन अब पेड़ ला संरक्षित सुरक्षित करना है और ओला पौधा ला संरक्षित सुरक्षित करके ओला पेड़ बने तक हमारा अपना जिम्मेदारी ला पूरा करना है। एकर अलावा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो चाहे थार मरुस्थल कर पूर्व कर विस्तार रोके घर खातिर अरावली पर्वत श्रृंखला कर आसपास बड़ा पैमाना में वृक्षारोपण भी करल जाता है। एकर साथ साथ सोयल हेल्थ कार्ड योजना, ये योजना इतना महत्वपूर्ण योजना है कि माटी कर उर्वरता बनाए रखे बर देश भर में जो हमर किसान मन है वो मतलब सिफारिश करल जाते, अनुरोध करल जाते कि अपन अपन जो हेल्थ कार्ड है सोयल हेल्थ कार्ड है इला बनाई, कैसे कि का माटी में कमी बेसी है हर पता चल जाए तो उतना ही हमन उर्वरक, उतना ही हमन जो माटी में लगी खाद रसायन जो भी हमन डाल थी वो उतना ही मात्रा में लगी जितना हमन भाई जान जाबो कि जैसे हमन अपन शरीर ला जान जाती कि भाई बुखार है कि खांसी है कि जुखाम है तो ओकस हमन अपन ला दवा बीरो करती, वही कस माटी कर अगर समस्या ला जान जाबो कि माटी में का समस्या है तो ओकर दवा बीरो वही कस करब। तो देखी एकर जो मरुस्थलीकरण होगी चाहे सूखा रोकथाम इला हमन एक ठी मने समझला कि सामूहिक प्रयास और जन कर जन समूह कर भागीदारी बेहद जरूरी है, काहे कि हमन अगर आज अपन पृथ्वी धरती ला सुरक्षित संरक्षित करबो तो आए वाला कल भी हमर सुरक्षित संरक्षित होही। चटी संदेश मल्ला है मल्ला सुनल जाए फिर आगू बढ़ करब।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिक

0: कृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: लगी हमारे नबे को छत्तीसगढ़ गीत सुनो। सरदई ने राकेश तिवारी और संगता कर गाल कहा कि देखिए अभी मरुस्थलीकरण कर गोट करें सूखा रोकथाम दिवस हम अनाज बनाता ही तो लेकिन पानी ला कैसे संजोना है कैसे हमर जिंदगी करो हर महत्वपूर्ण एक ठी हमर मने आधार है जीवन कर तो लेकिन एक गीतला सुनल जाए।

किसान मित्र हो, देखिए एगो शब्द है कस्टम हायरिंग सेंटर। अब देखिए जो कस्टम हायरिंग सेंटर है इला ग्रामीण क्षेत्र में छोटा और सीमांत किसान मन खातिर एक गेम चेंजर योजना मानल जाता है। कैसे? सीधा शब्द में अगर इला समझना है तो कृषि यंत्र मनकर बैंक है। हर किसान मन अपन जरूरत कर हिसाब से आधुनिक खेती कर उपकरण जैसे ट्रैक्टर होगी, रोटावेटर, कंबाइन हार्वेस्टर, लेजर लैंड लेवटर और ड्रोन, एमन सब ला किराए में ले सकते हैं। अब लैंड लेवलर, ड्रोन मनला ये सब जब जेकर जैसा जरूरत हो उला किराए में ले सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार कर सबमिशन में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत ये बड़ा पैमाना में हरकर शुरुआत करल गई से और बढ़ावा भी दिया जाते हैं। छोटा सीमांत किसान मन है, देखिए मतलब एमन खातिर कैसे कस्टम हायरिंग सेंटर जरूरी है। और जो बड़का किसान मन है, देखिए मन तो भाई बगरा अगर उमन कर खेती किसानी होते तो बहुत सारा ऐसा यंत्र है जिला उमन खरीद लेते। तो छोटा किसान मन कर से भारी निवेश से बचत हो जाते। छोटा किसान मन पास इतना बजट नहीं होता कि भाई लाखों रुपये अगर आधुनिक कृषि यंत्र खरीद लें, चाहे भाई किराया में भी लेते हैं बाहर से कहीं से, तो भाई तो चटिक बगरा किराया लगते। तो ऐसे में एकर जो कम किराया दे के ये सब कस्टम हायरिंग सेंटर से लेके लाभ उठा सकते हैं। और जैसे पारंपरिक तरीका कर तुलना में आधुनिक मशीन से बुआई, जुताई, कटाई कर काम समय एकदम कम हो जाते, तो ये एकर भी लाभ ले सकते हैं। समय कम हो ही तो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, सही समय में सही मशीन जैसे हैप्पी सीडर चाहे मल्चर कर उपयोग से फसल कर गुणवत्ता और पैदावार दोनों में सुधार होते। अच्छा, अब देखिए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले खातिर भी सरकार सब्सिडी वित्तीय सहायता देता है। कैसे? सरकार योजना के तहत ग्रामीण युवा मल्ला, किसान उत्पादक संगठन FPO, सरकारी समिति और स्व सहायता समूह SHG कर नया सेंटर खोले कर भी लिए भी भारी सब्सिडी देता है। अब फिर भाई देखिए बहनी मन तो ड्रोन उड़ाते चाहें, बहनी मन तो ड्रोन योजना में जुड़ी ना है। अब ये योजना में भी जो है कस्टम हायरिंग सेंटर योजना में भी जुड़ के लाभ ले सकते हैं। अब ये में देखिए लाभार्थी के प्रकार से ये में जो है व्यक्तिगत चाहे उद्यमी चाहे ग्रामीण युवा प्रोजेक्ट लागत कर 40-50% तक सब्सिडी मिल जाएगी। और ग्रामीण युवा मनला रोजगार देना एक उद्देश्य है। FPO किसान सहकारी समिति में प्रोजेक्ट लागत कर 80% तक अधिकतम 1,000,000 तक करे में सब्सिडी मिल जाएगी। अगर एकर जो उद्देश्य देखा तो सामूहिक रूप से खेती ला आधुनिक बनाना एकर उद्देश्य है। अब महिला स्व सहायता समूह SHG जो है इला विशेष प्राथमिकता और 80% तक कर सब्सिडी दिया जाता है। फिर दोबारा कह दो बहनी मल्ला, विशेष प्राथमिकता और 80% तक कर सब्सिडी में दिया जाता है। महिला किसान मल्ला आत्मनिर्भर बनाए पर ये जो योजना है एकर से जुड़ के बगरा महिला मन आत्मनिर्भर बने एकर खातिर ये योजना ला मैंने कस्टम हायरिंग सेंटर ला भी खास जो महिला वर्ग मन है ये मनला अधिक सब्सिडी दिल गई से। अलग अलग राज्य में भाई अलग अलग तरह कर प्राथमिकता कर आधार पर सब्सिडी का नियम और राशि में चटिक बदलाव हो सकता है। तो इला पूरा जानकारी बढ़िया जाए के ले सकते हैं। अच्छा देखिए कस्टम हायरिंग सेंटर जो है इसमें मुख्य उपकरण के रूप में जो है जो मशीन मन रखल जाते थे उकर मांग स्थानीय क्षेत्र में साल भर चाहे सीजन में विशेष रूप से होते। अब देखिए अब जैसे मानसून का समय आता है तो प्राथमिक जुताई खातिर ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, फिर बुआई करी तो

0: खातिर सीड ड्रिल, न्यूमेटिक प्लांटर, पेडरी ट्रांसप्लांटर, धान लगाए वाला जो मशीन है। अब फसल प्रबंधन खातिर पावर स्प्रेयर, मल्चर, कृषि ड्रोन कीटनाशक छिड़काव पर, और अवशेष कटाई पर कंबाइन, हार्वेस्टर, रिपर और स्ट्रा रिपर चाहे बेलर जरा प्रणाली प्रबंधन खातिर लगा थे। आवेदन कैसे कर सकते हैं? अपन क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो किसान भैया बहनी हो, अब काफ़ी हद तक इला डिजिटल कर दे हल्गी से, आधिकारिक पोर्टल जो भारत सरकार का है उसमें जाए के और agrihire.nic.in में पोर्टल में जाके अपन राजकर कृषि विभाग DBT वेबसाइट पे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज हो ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन कर दस्तावेज, FPO समिति कर पंजीकरण, प्रमाण पत्र और प्रस्तावित मशीन कर कोटेशन। आवेदन कर बाद कृषि विभाग कर अधिकारी द्वारा सत्यापन करल जाए और लक्ष्य कर अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा मंजूरी देहल जाए। तो ये तो एकदम विस्तार से होगी बात हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर कर और योजना से लाभ उठाए के बढ़िया कस्टम हायरिंग सेंटर भाई खोल ले और जैसे हमर बहनी मन तो खोल नहीं तो बढ़िया किराए में भी दे सकते हैं और अपनों घर कर खेती पातियों में भी बढ़िया में लाभ ले सकते हैं। अब बहनियों आज ये जो हमन गोट करी ही डॉक्टर तृप्ति वर्मा संघ महिला स्व सहायता समूह से सशक्तिकरण ये विषय है तो लगी का कहते हैं ला सुनल जाए। सुनैया किसान भैया बहनी हो आज हमारे संगे हैं डॉक्टर तृप्ति वर्मा, अतिथि अध्यापक कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र संकरगढ़ बलरामपुर। महिला मनकर समूह निर्माण और स्वरोजगार से आर्थिक सशक्तिकरण कैसे होते, कैसे बहनी मन जुड़ के उन्हें लाभ लेते हैं और कैसे कैसे अपन और समूह ला बड़ा करते हैं बगड़ा करते हैं एकर साथ साथ सब तरह कर बहनी इमें जुड़ते और लाभ लेते हैं ओला विस्तार से बताएं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक रूप से स्वतंत्र बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। यह न केवल महिलाओं के जीवन में सुधार लाता है बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार, समुदाय और देश प्रगति में बहुत भागीदारी होती है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शक्तिशाली बनाना जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं, परिवार समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। कुछ महिलाएं ही रोजगार की बात करती हैं, बहुत सारी महिलाएं आज दबी हुई हैं, चिंता का विषय है। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना, उद्यम की ओर अग्रसर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब महिलाएं अपने लिए आवाज उठाएंगी तभी समाज, राष्ट्र एवं देश का विकास होगा।
0: अच्छा, ये होगी महिला सशक्तिकरण कर गुट। अब हमने महिला समूह निर्माण कर जो बात करी थी जिसमें महिला मन स्वरोजगार पर, ओकर कैसे शुरुआत होते, कैसे बहनी मनों में जुड़ते, पात्रता का है जब कर शुरुआत करल जाए।
1: महिला समूह बनाए बर सबसे पहली तो 10 महिला मन की जरूरत होते। अब वो 10 महिला में 20 महिला मन मिलके या फिर 10 से 15 महिला मिलके कुछ व्यवसाय शुरू कर सकते। सबसे पहली पैसा जमा करना शुरू करी, पास के जो भी अपन बैंक हो ही, जैसे कि SBI हो गए, पंजाब नेशनल बैंक हो गए और कोई सहकारी समिति हो गए, वहाँ जाके अपन खाता खुलवा के पैसा जमा कर सकते या तो फिर वहाँ से लोन लेके भी अपन कामला शुरू कर सकते।
0: महिला समूह शुरू करे बर सरकार में लोन देहते है और कितना देहते है?
1: लोन में अगर आप ला कृषि व्यवसाय करना है तो आप ला हर तरीका से लोन मिल ही, उसमें बहुत सारा योजना है। ऐसे है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड बंद है, उसमें आप पशुपालन के लिए भी लोन ले सकते हो। अगर आप मन 25,000 तक के भी लोन आप ला बिना गारंटी की मिली, ओकर बाद अगर आप मन ला अच्छा अगर काम ला देखते सरकार हा तो ओकर बाद तुमला 3% के ब्याज में भी, 3% प्रति वर्ष ब्याज के अनुसार भी आप ला लोन देते।
0: समूह निर्माण कर हमन बात करती है, बहनी मन कर कोई पात्रता जरूरी है कि सब बहनी में जुड़ सकते हैं?
1: सब बहनी मन जुड़ सकते है, ऐसे कोई पात्रता नहीं है। पढ़े लिखे बर आना चाहिए, साइन करे बर आना चाहिए, बाकी वो काम में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी जो होत रही थे महिला समूह के ओला धीरे धीरे से शुरू करके किए जा सकते सब कामला। एमए ऐसे नहीं है कोई ऐसे पात्रता बहिनी मतलब प्रशिक्षण देके हम काम करवा सकते हैं।
0: एकर मतलब है कि

0: जो पढ़ल लिखल बहनी नहीं भी है
1: हाँ
0: ओभी में
1: हाँ,
0: सकत है।
1: ओभी में व्यवसाय करके अपन आय ला बढ़ा सकते हैं, अपन परिवार ला समाज ला आगे बढ़ा सकते।
0: का पहले मन तय करते हैं कि काम का करना है, उकर बाद समूह का निर्माण होते है, उकर बाद सरकार मन ला वित्तीय सहायता प्रदान करते कि कैसे होते?
1: पहली तो सब महिला मन हा साथ में जुटे के जिकर एकता री थे हाँ। मन आपस में जुड़ते हैं, ओकर बाद ओमन हा सोचते कि हमर मन के आय के हिसाब से हमन हर महीना कितना पैसा जोड़ सक। ओ पैसा जोड़े के बाद ओमन हा खाता खुलवाते, वहाँ पैसा जमा करते, और अगर ओमन ला व्यवसाय अगर शुरू करना रही और अगर ओ पैसा से अगर ओमन ला पैसा कम पड़ा थे तब फिर ओमन हा सरकार से लोन लेते।
0: तो ओला बताते हैं कि हमन ला ये काम करना है तो सरकार ओ हिसाब से ओमन ला लोन देते
1: जी।
0: एकर बाद ओमन अपन कार्य ला शुरू करते
1: जी।
0: अच्छा जैसे जब काम ला बनो बढ़ात सूचित करते हैं कि भाई हमारे काम ला बढ़त है, जैसे कि होते कि जैविक खाद बनाते हैं, कोनो कोनो कृषि संबंधी कोई पैकेजिंग का कार्य करते हैं, कोनो कोनो भाई स्व सहायता समूह कर माध्यम से अचार बड़ी पापड़ बनाते हैं, चाहे खेल खिलौना बनाते हैं, रिकिम रिकिम कर गोबर कर भी कई तरह का दिया बनाते हैं, चाहे कहीं कहीं ऐसा उत्पाद बनाते हैं जो पूजा पाठ में भी हमारे इस्तेमाल करती। ओला कैसे बहनी मन बताते हैं कि अब हमारे काम जो है वो बगरा बढ़त है तो अब हमला औ पैसा के जरूरत है कि हमन औ काम ला अपन थोड़ा सा बढ़ा सकी और ला बाजार ला बाजार में ला दे सकी।
1: ओमन हा अपन आय ला भी और अपन व्यय ला भी अगर ओमन हा जितना लोन ले हैं ओकर से ओमन अगर वो लोन ला पूरा चुका देते
0: समय पे अच्छा
1: पे ओमन हा लोन ला चुका देते हैं तो सरकार ला समझ में आते कि इकर काम बहुत अच्छा से चला थे। अच्छा, अच्छा। एमन ला मैं लोन दे सकथूं, एमन औ आगे बढ़ी, एमन औ व्यय करही औ बाजार ला बहुत अच्छा से चलाही औ नया नया प्रकार के सामान बनाही औ ओला बाजार के मांग के अनुसार बेची तो इका मन के आय औ बढ़ी। ओ हिसाब से सरकार हा अगर महिला मन समय में अगर अपन लोन ना चुका देते तो वो हिसाब से फिर सरकार मन ला दोबारा पैसा देबर फिर से रेडी होते।
0: अच्छा अब जैसे मान ला कि प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई बहनी मन ला बाजार चाहिए
1: जी
0: वो चीज ला अपन बेचे बर, तो ओमन का स्वयं पता करते हैं कि इमें सरकार कर कोई भूमिका होते कि ओमन का सामान ला भी बिक्री करे में कोई मदद?
1: सरकार का ना भी एकर आजकल प्लेटफार्म हो गए है, सी मार्ट करके छत्तीसगढ़ मार्ट करके हावे, बहुत जगह बहुत सारा सिटी में रिथे, वहाँ आप वहाँ सामान ले जाके दे सकते हो, ओमन हा थोड़ा मार्जिन करके थोड़ा बढ़ा के ओमन बेच सकते, अपन सामान ला सरकार ला भी दे सकते हो, और अगर आप अगर डायरेक्ट अगर बाजार में बेचना चाहत हूँ तो वो भी सबसे बढ़िया है कि आपके बीच में कोई बिचौलिया ना रहे, तो जेकर से आप जो व्यय करत हो उकर सबसे ज्यादा आपला आय मिले है ना। या चाहो तो आप सरकार के जो सी मार्ट है या तो फिर घर घर जो फेरी वाला मंडी थे ओकर थ्रू भी बेचवा सकते हो।
0: कोई भी बहनी मन समूह से जुड़ के समूह का निर्माण करके कैसे घरेलू उत्पाद जो मन करते हैं ओला बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण पा सकते हैं ओकर काम आते?
1: सबसे पहली ऐसे ही कि स्व सहायता समूह, अब वो स्व सहायता समूह में आप घर के उत्पाद बना के कुछ ऐसे महिला मल्ला दो जेहा जेकर पास टाइम नहीं है, वो अचार बड़ी पापड़ ये सब चीजें नहीं बना पाते, ओकर पास आप डायरेक्टली भी बेच सकते,
0: बाजार उपलब्ध है माने?
1: हाँ बाजार आराम से उपलब्ध है, बस ये है कि आपला पता करेला लगी कि कहाँ पे आप बेचो, जहाँ पे आप सामान अच्छा से बेच सको, जहाँ पे लोगन के पास कम समय है वहाँ पे। अगर प्रशिक्षण ऐसे है कि आसपास में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र होते सहकारी समिति होते और वहाँ पे बीच बीच में प्रशिक्षण करवाते।
0: अच्छा।
1: कई बार ऐसे जैसे आसपास के जैसे कृषि महाविद्यालय मन है, जैसे कि हमारे शक्करगढ़ वाले मन है और यहाँ अंबिकापुर में उपस्थित राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय है, ये मन आसपास के गाँव में जा जाके प्रशिक्षण देते कि आप मन मशरूम उत्पादन कर सकते हो, अचार बड़ी पापड़ कैसे बना सकते हो, आप मन अगर आपके घर टमाटर ये सब चीज के अगर ज्यादा उपलब्धता ज्यादा उत्पादन होते तो उकर आप मन सॉस केचप बना के भी बेच सकते हो है ना। ये सब चीजों के आजकल बहुत ज्यादा मांग है, ओ हिसाब से
0: होममेड के तो मांग बहुत है,
1: होममेड के बहुत मांग है, उकर जैसे आपन आराम से ये चीज ला कर सकते हो।
0: एक संदेश कर माध्यम से अब बहनी मन लगा करना चाहिए कि इमें जुड़ी और खूब लाभ कमाई।
1: हमर मन के यही मानना है कि जितना ज्यादा महिला मन जुड़ के अगर 20-20 महिला भी जुड़ के बहुत सारा अगर हर गांव में अगर 5 समूह भी हो जाते ओमन अगर अच्छा सरकार के सुविधा ला उपयोग करके तो एक गांव से 5 उत्पाद निकल जाते, ओकर बाद फिर दूसरा गांव से 5 बढ़ जाते, तो ओ हिसाब से एक शहर के आसपास के सभी गांव धीरे धीरे आगे बढ़ी, सभी महिला मन भी आगे बढ़ी। आय बढ़े से का होते महिला मन के जीवन में बहुत

0: सारा बदलाव आते उकर रहन सहन अलग बढ़ते है आत्मविश्वास बढ़ते उकर बाद फिर उमन अपन परिवार ला भी अलग तरीका से चलाने की कोशिश करते समाज में भी उकर अलग जगह होते वो हिसाब से
1: हाँ।
0: तो उमन ला ये सब करना ही चाहिए वो आगे बढ़े बर जे मन नहीं पढ़ पाए पहली उमन ला लगते कि हम कुछ काम करन है ना तो उकर मन बर ये सबसे अच्छा ये उपलब्धि हो जाए कि उमन ये स्व सहायता समूह के द्वारा अगर अपन काम करी तो
1: जी बहुत बढ़िया जानकारी दे है डॉक्टर तृप्ति अब जो हमर बहनी मन है सुनीन हुई जरूर ये बात लगुन ही कि केकस ओमन अपन ला समूह कर माध्यम से जुड़ी और स्वरोजगार से आर्थिक सशक्तिकरण ला मजबूत करी तो हमर कार्यक्रम में जुड़ा कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी धन्यवाद
2: देखिए भाई एक जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो किसान सम्मान निधि कर 23वां किस्त कर जो पीएम किसान सम्मान निधि है कर 23वां किस्त ला दही किसान भैया बहनी मनला और देखिए अब समय भी है कि अगर भैया बहनी मनला अगर सम्मान निधि मिल जाही और कितना किसान मनला तो भाई जो सम्मान निधि है भेटा थे तो तुरंत भाई अपन खेती पाती कर काम ला सुचारू रूप से शुरू करते हैं अभी जो तब तैयारी करते हैं कि केकस अपन खेत ला तैयार करके और मानसून कर शुरुआत कर पहले अभी भाई अपन रोपा बीड़ाला शुरू करें तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं किसान सम्मान निधि कर 23वां किस्त कर जो 23वां किस्त ला किसान मनला जो दही अब जो आज हमर जो कार्यक्रम है एमे हमन एक ठी जो हरा चारा उत्पादन विधि कर गोड करें नहीं हरा चारा उत्पादन विधि नहीं कस्टम हायरिंग सेंटर कर हरा चारा उत्पादन विधि ला जैसे एक ठी जल्दी से ओला बताए देता हूँ कि हरा चारा उत्पादन में भी जो किसान भैया बहनी मन पशुपालक करते एमे हाइड्रोपोनिक्स एक ठी बढ़िया विधि है अगर जमीन अपन पास नहीं है जमीन कर कमी है चाहे पानी कर संकट है तो भी आधुनिक तकनीक से और बेहतर तकनीक से ला बिना माटी कर केवल पानी और पोषण तत्व कर मदद से ला ट्रे में जैसे हमन अंकुरित अनाज करती ना वही कस जो मक्का जई जौ इला अंकुरित करके 7 से 8 दिन में पौष्टिक चारा उत्पाद तैयार कर सकते हैं अब गर्मी और खरीफ जैसे खरीफ और जायद में जो ज्वार बाजरा मक्का नेपियर घास लेते हैं बहुवर्षीय चारा में हमन देखते हैं कि हाइब्रिड नेपियर घास रहते एक बार लगाए में 3 से 4 साल तक लगातार हरा चारा देते और एक खेत में खेत का किनारे और मेड़ में भी इला आसानी से उगाया जा सकता है अब देखिए किसान भैया बहनी हो आज कर जो हमन मंडी भाव और मौसम कर जानकारी ला ले ले थी आज कर अधिकतम तापमान देखब तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस है कल कर अनुमानित जो तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है एक अलावा जैसे देखिए कि अब जो आज कर मंडी भाव अंबिकापुर करे है गेहूँ देख 2485 रुपया प्रति क्विंटल सरसों है 6000 रुपया प्रति क्विंटल मक्का है 1400 रुपया प्रति क्विंटल अलसी है 5600 रुपया प्रति क्विंटल आज कर जो हमारे सवाल लेते ही अब जैसे मैं हरा चारा कर गोट करें तो हरा चारा कर उत्पादन विधि में बिना माटी जो हाइड्रोपोनिक्स विधि है यह का है इला कैसे उगा सकती है हमारे सवाल है और पाछू जो बीतीस बुध जेकर हमारे सवाल ले रहे हैं कि फसल कर न्यूनतम समर्थन मूल्य का होते तो एक जवाब मिली से फसल कर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसान मनला बाजार कर उतार चढ़ाव और वित्तीय जोखिम से बचाकर एक सुरक्षित आयकर गारंटी देते तो और आज कर जो हमारे सवाल है हरा चारा उत्पादन विधि में बिना माटी चारा उगाना हाइड्रोपोनिक्स विधि का है तो एक जवाब चिट्ठी पत्री कर द्वारा चाहे हमला मेल कर द्वारा भी भेज सकते हैं अब भैया बहनी हो देखी चटिक बेरा बची से है तो मैं यही कहना चाहता हूँ किसान भैया बहनी मल्ला कि देखिए मानसून इस साल कहते हैं कि भाई चटिक कम रही लेकिन हमन आशा अपेक्षा नहीं छोड़बो ऐसे हमन सीमांत किसान छोटा किसान मन तो भैया यही चाहते हैं सब यही करते हैं कि बढ़िया मानसून रहे ताकि बढ़िया खेती पाती हो और जो पशुपालक हैं पशुपालन जो है तो उमन भी ये बात का ध्यान दें कि हरा चारा चटिक रखें का है कि बरखा का दिन हो चाहे सूखा का दिन हो इसमें हरा चारा जब पशु मल्ला देते तो दूध उत्पादन बढ़ाए में पशु मल्ला स्वस्थ रखे में और 12 महीने पौष्टिक हरा चारा मिले तो बहुत बढ़िया होते पशु मल्ला अब देखिए क्या होता है कि उच्च गुणवत्ता वाला भी हरा चारा साल भर किसान भैया बहनी मन भी पैदा कर सकता है एमए

पारंपरिक और उन्नत विधि से जो बुआई करते हैं ओला तो बढ़िया चाहे, लेकिन जैसे मैं अभी ये जो हरा चारा कर हाइड्रोपोनिक्स विधि ला बताए हूँ, ये भी एक थी बहुत बढ़िया विधि है। अच्छा, गर्मी में जो हमन गर्मी और बारिश में ज्वार बाजरा मक्का और नेपियर घास ले थी, लेकिन एक वाला बहुवर्षीय चारा जो है हाइब्रिड नेपियर घास एला मक्खन घास भी कहते हैं, एक बार लगाए के बाद 3 से 4 साल तक लगातार हरा चारा देते और खेत कर किनारे मेड़ में भी एला आसानी से लगाया जा सकता है। एक थी अंजोला विधि भी रहते, एक थी जली फन पौधा है जो प्रोटीन अमीनो एसिड और विटामिन से भरपूर थे, ये छायादार जगह में भी छोटा कृत्रिम गड्ढा पौंड मैंने पौंड बना के लगाए सकते हैं और आसानी से उगाए सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 दिन में दुगना हो जाते और नियमित चारा में मिलाए के पशु मन लखिलाए से दूध में भी बढ़ोतरी होते। आज गोट बात ढेरे हुई, अब कंटाहर कहते कि तीजिला विदा दई, स्वच्छ रहा स्वस्थ रहा, फिर भेटब, राम राम।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए अभी चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर। रात्रि के 8 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और पहली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर से जीवधन सिंह पैकरा, घुड़नी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमारसाय कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि ऐश्वर्या पैकरा, बेडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची तनु करमरकर, कुंजनगर जयनगर से प्रेमलता देवांगन, अमीर तांजे, महिमा देवांगन और श्रेया देवांगन, स्वरूप आनंद सरजाल आप हैं जोड़ा पीपल अंबिकापुर से, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष, चलगली रनहत बलरामपुर से बलराम मिश्रा, पूनम मिश्रा, उर्मिला मिश्रा, आद्विक मिश्रा, कुहू मिश्रा, उनके परिवार के सभी सदस्य, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव, कसकेला सलका भैया थान से स्नेह कुमार सिंह, ज्योति सिंह, सेजल सिंह, अर्चना सिंह, साक्षी सिंह, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती, बिहार से वसीम अकरम, जोई और गुड़िया खातून, लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकी पवार, अलमाज बानो, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, मोहम्मद हसनैन पवार और कौशलपुर सूरजपुर से सुखराम सिंह मरावी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है फूल और कांटे।

आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में, फिल्म का नाम है कोयला। गीत सुनने की फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने। सारसताल सोनगरा सूरजपुर से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय मेर साय श्री भगत हेमंत कुमार और राम खेलावन सिंह पैकरा। संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना और आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी हसन और उनके साथी। आमागासी लखनपुर से मुनेश राम, शालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु और उनके परिवार के सभी सदस्य। अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा और दीपेश वर्मा। नोरा फिरोजाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत और रामानंद कुशवाहा। सिरकुतंगा लहपटरा सरगुजा से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू, घनू, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल राम, प्रियांशु, राजकुमारी नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नी भाई, सोनामती, माया राजवाड़े, सिमरन राजवाड़े और उनके परिवार के सभी सदस्य। और अनुजनगर सूरजपुर से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, दिया राजवाड़े, काव्या राजवाड़े और मंजू राजवाड़े। और राजापुर सूरजपुर से हमारे श्रोता खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीताराम मरकाम, सितंबर, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े, नूरसा

है हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम और आरती मरकाम। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म कोयला का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में।

लीजिए सुनिए श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जो है किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है याराना और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। और ये श्रोता हमारे हैं गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। और पंजाब से मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान। और इसी गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। ये हैं हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और उनके परिवार के सभी सदस्य। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, सिद्मा बाजार पारा से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस, नरेश सिंह और उनके परिवार के सभी सदस्य। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। पिपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। अमरावती से सईद भाई, सूफियान अनस, आयजा आफिया, सदफ सरोज। चौक से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान और उनके सभी साथी। मोहाली चंडीगढ़ से रितिक मल्होत्रा, टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेपानी, संगीता नेपानी, आकाश नेपानी, आयुषी सागर, यशी हनी, पूजा सीता और उनके परिवार के सभी सदस्य।

श्रोताओं, इस वक्त आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है राज। गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। ग्राम लसूड़िया पता नरसिंहगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र दांगी। पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और उनके साथी। नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास सिंह और ओम प्रकाश सिंह। बेगूसराय बिहार से नंदन कुमार सिंह, अंकित सिंह और मोतिहारी बिहार से संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके और पूजा रामटेके। और उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वागदरिया, धाकड़ भोला वागदरिया, प्रवीण, रियांश, प्रतीक और उनके परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म राज का ये गीत।

आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाज में। फिल्म का नाम है तपस्या और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर, फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद डूडी, पुष्पेंद्र डूडी, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण, नवापरा बलौदा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर, बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार, अफजल मलिक, मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर और फातिमा, और ग्राम हिंगड़ी आलोट रतलाम से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी, और डोंगर गांव से राजपाल गजपी है, राधिका गजपी है, अनिष्का और तन्मय गजपी है।

लीजिए, पेश है कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े और उनके साथी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवहारकर, निर्मला नवहारकर, विशाल नवहारकर, सोपान तायडे। राजापुर सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। कालापरा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़ी और उनके साथी। संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। टोरोवाल नवाशहर से गगनदीप थांदी, तृप्ता थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी। और ये श्रोता हमारे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदेही जोशी, व्यामिका जोशी, अंकित जोशी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट। मुरादाबाद दूल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। चरडोगरी पिपरिया कबीरधाम से दुर्गा राम साहू, अजय साहू, जयकिशन साहू, कुमारी साहू, इंद्रमणि साहू और माया साहू। और ममना हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा और उनके साथ। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर लता मंगेशकर का गाया फिल्म शारदा का ये गीत।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आप ICC T20 महिला विश्व कप क्रिकेट के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंगले लीड्स में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज पर सुन सकते हैं। FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है काला पत्थर फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज है। गीत सुनना चाहा है आप सबने बाबा कोटी रायगढ़ से, शिव कुमार चौहान, आशिक चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायली सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा वानिया सिंगरौल, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया, मयंक और उनके साथी, दूल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष, सोनी मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, नटेरन विदिशा से कल्याण सेन, पुष्पा सेन, नितिन सेन, जतिन सेन, धमतरी रुद्री से सीमा साहू, चंद्रकांत साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री, शिखा और शेफाली, तकिया आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा और उनके साथी, अहमदगढ़ पंजाब से अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, राजिया और उनके साथी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव, बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख, रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू ईशु, बाबा अनिया अनाया उनके साथी, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद और फैजान मोहम्मद, श्रीरामपुर से अशोक कुम्भार, अविका जीविका सानू कुम्भार, अर्चना कुम्भार, अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अविका और साइशा सोनवड़े, धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार, संध्या माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और उनके परिवार के सभी सदस्य, और ये श्रोता हमारे हैं भागलपुर से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन, करीना, पूजा, आरती और सुनीता देवी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश कार्यक्रम का अगला गीत, जो है फिल्म काला पत्थर से।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश और लता मंगेशकर का गाया फिल्म फर्ज का गीत, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी दुबिया नेवादा से एक प्रतीक राय और रोशनी राय, छिंदवाड़ा से नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, हर्षिता कलमंडी से, अनूप सिंह नथावत और उनके परिवार के सदस्य, सहारनपुर से राधा नामदेव, अर्पणा नामदेव और अभिषेक नामदेव, गुजरात पाटन से धीरज वी राबरी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और किट्टू, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखिंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना जनकपुरी से पिंटू और राजेंद्र सिंह, सतना से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, मजीनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। ये श्रोता हमारे हरियाणा से हैं विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर, मास्टर लुबना और आलिया अंसारी, मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा, यहीं से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार और उनके साथी, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण भाषिंडे, अनीता भावशिटे और राहुल भावशिटे, बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, पिम्बला अनेजा, उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत मोहम्मद और उनके साथी, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौंड, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और अनुराग मोहन, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन, करनाल से विनोद लखनपाल, पीतरामल बोरखेड़ा से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन, इशाद देवांगन, चकरभाटा कैंप से डीआर नारवानी, रवि चांदनी, खुशी नारवानी और पंजाब खेड़ा फाजिलका से भूषण खेड़ा, विशु विशाल विष्ण और शालिनी खेड़ा और आपके परिवार के सभी से।

0: फिल्म फर्ज के इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश यही समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं समाचार संध्या। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक

0: पत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को

0: दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
4: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
2: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और

0: अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
2: Excellency, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed promoting balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all at the ongoing G7 summit. In his address, the Prime Minister underscored the need for international financial institutions to develop mechanisms that impart economic resilience to developing countries. Mr. Modi also participated in a working lunch focused on ensuring safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The meeting brought together G7 member countries, partner nations and the CEOs of leading AI companies to discuss the future of digital innovation. On the margins of the G7 summit in Evian, Prime Minister Modi and German Chancellor Friedrich Merz today exchanged views on regional and global developments, including the situation in West Asia and the Russia-Ukraine conflict. The two leaders also reviewed the progress in bilateral engagements and expressed satisfaction at the renewed momentum

0: India were bowled out 402 in 49.5 overs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa, and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at VivaTech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chased target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। रात्रि की 9:15 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत। और इसके अलावा श्रोताओं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप, महिला क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंगले लीड्स में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल आप हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज पर सुन सकते हैं और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत उदित नारायण और हेमा सरदेसाई की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत तैयार किया है संजीव दर्शन ने और फिल्म का नाम है मन।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: आइए सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा गीत। प्रीतम के संगीत निर्देशन में आवाज श्रेया घोषाल की है और फिल्म का नाम है एक्शन रिप्ले।

चित्रपट संगीत के आखिर में आइए सुनते हैं समीर की शब्द रचना, संगीत आदेश श्रीवास्तव का है, फिल्म का नाम है बागबां और आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की।

उदित नारायण और अलका याग्निक की गाय फिल्म बागवान के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कार्यक्रम चर्चा का विषय है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हों, युद्धपोत हों या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी हैं। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।
1: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कलपुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
3: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर्स का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना, तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में। इस प्रकार अपने बनाए हुए रडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया, और यही कारण था

0: अबाउट 88 आवर्स, सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है, उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना। ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इससे बनाया है। तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई। और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो 15.6%, वो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा। और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 43,000 करोड़, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 करोड़ है। प्राइवेट प्रोडक्शन, यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 करोड़ में प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन है। दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट द सेम एज व्हाट वाज द टोटल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 2014।
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इस 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास हैं, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनियों को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, इंपोर्टर अभी हम रहेंगे, 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, हम इंपोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ, कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
0: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के DRDO ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, वो फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसका फैक्ट्री बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है, 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट फॉर मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, L&T हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त।

जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 1,78,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, इट इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो, जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो। तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने मार्क वन बनाया है, आपने हमने बनाया हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस सप्लाई उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिल

0: करना, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस सप्लाई स्पेयर उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमियां है, IITs है, वहां के बच्चे बड़े होशियार है, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स है वो आगे आते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम बिहार, जैसे आप कह रहे हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कई एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी। ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टिल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा दो साल हो गए, दो इंजन नहीं आ पाए, दो साल हो गए। क्यों? उनके भरोसा, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे। इसलिए अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर MCA प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब चार गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इंपोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल, आर्टिलरी गन इंपोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंत, उसके 3 आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में, टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इंपोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है, तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी UAV बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इंपोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि 5वीं श्रेणी का लड़ाकू विमान है, उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में 3 कंपनियों को, 3 कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा है कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बियां हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की 2 श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था 8-10 साल हमें पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी, आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
0: ड्रोन वॉरफेयर अब समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके

0: साथ अडाप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में। तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है, हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पे पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करके, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इंपोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये। तो इसलिए आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें जरूर, चाहे स्टार्टअप्स के पास आपके पास या नेविगेशनल डिस्ट्रिक हो या उसके सीकर्स हो या उसके पास फोटोग्राफिक डिस्ट्रिक, बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप्स के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप्स को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे, कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम ये हमारे लिए है, इसमें आत्मनिर्भरता तो भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GFQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे है, और वो उस बात का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशंस है, तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसलिए रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए, UAVs को मद्देनजर रखते हुए, न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चाहे स्पेस है नेविगेशनल है जो जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिल करके अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है ये हम भारत के अंदर बनाए, और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।
2: इसके कई सारे आंसर हैं। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और ये मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहां 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी, और सबसे बड़ी बात अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे, जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं R&D के इंजीनियर हैं लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा, मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी जब आप ग्रो करेंगे, तो जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूं बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज टास्क, तो आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए, और वो ट्रेंड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेन मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है। कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी, जब आप

0: जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं। बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है, और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा वो। जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको। MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया। साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पे इंपैक्ट करता है सबको, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इंपैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
2: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं, और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है। अगर नंबर वन GDP वाला अगर $22 trillion का है, नंबर टू तकरीबन 17-18 trillion का है, तो नंबर तीन 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 trillion की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है ये हमारा देश है और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए। लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है भिनभिना गई, उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। आज देखिएगा कौन सा है वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, फटाफट कौन सा जनरेशन है 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इम्पोर्ट किया 4.5 जनरेशन, 5th, 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते हैं किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब अब भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं। हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया, इसको किस तरह जो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर्स इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने UAVs है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स हैं, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, विश्व में जाकर के सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक US के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है। जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब वेन यू ट्रेन्ड वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपका आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
0: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड्स द शिप, जमीन से सामने के युद्धपोत पे मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मेनिया को आम कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिससे तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाई अप है, USSR यानी अब सोवियत रशिया के साथ।

0: है और रशिया के साथ, मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाई अप है विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन के, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यही इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई उसकी, कुछ इंपोर्ट होता है कुछ यहाँ बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया, 1,78,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है। और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए, 30 साल लग गए जी 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहाँ कि आपने ये बनाना, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कुछ सिखाएगा नहीं, कोई, देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो, तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम भी एक डेवलपिंग कंट्री हैं। तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D वेरी स्ट्रांग, R&D अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हुए, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रांग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
2: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आगे दर्जे का बनाना है। अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर अगले 5 साल के अंदर। एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

चर्चा का विषय है कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर। रात्रि के 10 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके कार्यक्रम ईमेल की गूंज का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और उससे पहले शामिल करते हैं अपने श्रोताओं के ईमेल। ये पहला ईमेल है श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू, कुम्भार, अर्चना कोयते, वस्ती पुनावले, अजय सोनवड़े, करिश्मा, अविका और साईशा सोनवड़े का। यवतमाल से हमें ईमेल भेजा है राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी मनवर ने। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह। जलालाबाद वेस्ट से हमें ईमेल भेजा है सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता हुजा ने। आकोट से मंगला बेंडे और शुभम बेंडे का ईमेल हमें मिला है। लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा और पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। डोंगर गांव से राजपाल गजबी है, राधिका गजबी है, अनिष्का और तन्मय गजबी है ने भी हमें ईमेल भेजा है। ये श्रोता हमारे हैं डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमनाज अंसारी और शबनम बानो। बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज। और रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू का ईमेल भी हमें मिला है। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और मुन्ना हिमाक्ष। धाड़ी नांद्रा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत जो है पप्पी लहरी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मनोकामना।

श्रोताओं, इस वक्त आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज। और आज इस कार्यक्रम का सफर आप तय कर रहे हैं अपने रेडियो दोस्त मृदुल के साथ। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं के। दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा, बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हक, राज एस टी अंसारी, मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना और वैशाली जयपुरिया, अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले, बुलढाणा वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आशिक चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान और डुगू कुम्हारहेड़ा। सहारनपुर से हमें ईमेल भेजा है सैयद मसरूर, शाइना हसन और इब्राहिम ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया, नासिर, साजिद, शाहिद और अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान का ईमेल भी हमें मिला है। राजापुर सूरजपुर से चंदेल दास देवांगन, रीता दास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूरसाय, राजवाड़े, समीर सिंह, सोनू का ईमेल हमें प्राप्त हुआ है। नथाना पंजाब से हमारे श्रोता हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। लग्जर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, मेराज जहां। मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली का ईमेल भी हमें मिला है। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल। पैठड़ से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, सिया जाधव। जालना से सोमनाथ जाधव, गीता ओम जाधव, सुभाष चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत और बाबू भाई। बंगला मटिया बालों से शिव कुमार अंगारे, अंजनी पीहू, त्र्यंबिका, लीना और आशुतोष अंगारे। फ्रांसी हिसार से हमें ईमेल भेजा है राजकुमार डूडी, प्रमोद डूडी और सौरभ डूडी ने। और संबलपुर कांकेर से भाकुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है डार्लिंग डार्लिंग।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आप आईसीसी T20 महिला विश्व कप क्रिकेट के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच हेडिंगले लीड्स में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारे मीडिया वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं के, धरोरा बस्तर से वी पूनम नायडू, साजन के शिवांश, रेशु, दुर्गेश, अभिषेक और इनके साथी, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, सारसताल सुनगरा से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार और राम खिलावन सिंह पैकरा, सनावा से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री, दुल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष, सोनी मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, खंडवा मध्य प्रदेश से शालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर, आयशा खत्री और धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा और जाकिर खत्री, जाखोद राजस्थान से शबुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक, पूजा और उनके सभी साथी, और धनौरी से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और अयान बाबू, जगदलपुर बस्तर से पुष्पांजलि नायडू, प्रीतम, चैतन्य, अक्षय, अमृता, संतोष, डुमराव से हमें ईमेल भेजा है असमान सर।

अंसारी, आमना परवीन, टुक टुक अंसारी, लड्डू अंसारी और उनके परिवार के सभी सदस्य। गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, कबीर डोम और राधिका पूजा। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का अगला गीत, जो है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है नाखुदा।

ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं के। डुमराव बिहार से अस्मा, परवीन, वली भाई अंसारी, सदफ, आरजू और मुंबई से इकबाल मोगा, अपसरी मोगा और अहमद, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज और हसन नवाज, फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु और उनके साथी, चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अबान और उनके परिवार के सभी सदस्य, कुरावली से राशि, हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आशना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, दिल्ली से हमें ईमेल भेजा है लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती, जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर, मेरठ से राधिका और आरती कौर, जाफराबाद दिल्ली से अजीम वकार और नीलिमा अजीम, पंडरिया से हमें ईमेल भेजा है पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र और रौनक सेन ने, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर और विविधा वंडलकर का ईमेल भी हमें मिला है, पटना बिहार से हमारे श्रोता है वसीम अकरम, सालेहा खातून, गुड़िया खातून और जालंधर से संदीप कौर बेलदार। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म जमीन आसमान का ये गीत।

अब पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत, और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं की। दुल्हापुर मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार और नरगिस खातून। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज, सुष्मिता और दीपिका साहू का ईमेल भी हमें मिला है। डुमराव से वली उल्ला अंसारी, असमा नाज अंसारी, शबनम बानो। बक्सर से राज एस डी अंसारी, फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा का ईमेल भी हमें प्राप्त हुआ है। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, पलेरा टीगमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह का ईमेल भी हमें मिला है। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और अदीबा। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, प्रभा रानी जाटव और कशिश जाटव। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का यह आखिरी गीत, जो है फिल्म जमीर से, आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले की।

किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए फिल्म जमीर के इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम ईमेल की गूंज यहीं समाप्त हुआ। आज इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त मृदुल के साथ। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया फिल्म प्रेम पर्वत का गीत, और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह और सुलक्षणा पंडित का गाया फिल्म गृह प्रवेश का ये गीत। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत तैयार किया है कन्नू रॉय ने, और इन दोनों गीतों की मिलीजुली फरमाइश इस तरह से है। धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेतराम साहू और भूपेंद्र साहू। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। इंदौर से वंदना मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, संजना मराठा, परी मालती, स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्ची। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और रवि श्रीवास्तव। अंबिकापुर देवीगंज रोड से राजकुमार नेवानी, संगीता नेवानी, आकाश नेवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और उनके परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना और उनके परिवार के सभी लोग। धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। और दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग यादव, अभिषेक, अलका, नामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। खोंदला बड़कापारा उदयपुर से जीवधन सिंह पैकरा, घुर्नी पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर और करिश्मा पैकरा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

श्रोताओं, इस वक्त आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आशा खान, हदीहा खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुस्तबा खान, राव भाई और शाहिद भाई। इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। ये श्रोता हमारे हैं पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। धमतरी से रामचंद्र माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और उनके परिवार के सभी सदस्य। गणई पंडरिया से दरिया नमल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी। तिलदा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला। उमरखेड़ महाराष्ट्र, मेहर नगर से अभिजीत गंवाड़कड़, सरिता गंवाड़कड़, सिद्धांत गंवाड़कड़, प्रिंस एकांश गंवाड़कड़ और नागपुर से शैलेश गंवाड़कड़, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गंवाड़कड़। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं भूपेंद्र और लता मंगेशकर का गाया फिल्म सितारा का ये नगमा।

0: लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनेर, अकुला से बलदेव दामोदर और अनुरा दामोदर, वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे, मिलिंद सरकटे, ततरेंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, गुलाबदास मानिकपुरी, विश्वनाथ और उनके साथी, बगबुड़ुआ पथरिया से नरे नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है फिल्म घरौंदा से आवाज है रूना लैला और भूपेंद्र की।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में,

भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म घरौंदा का गीत। और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म महबूबा का ये नगमा। और इसे सुनने के ख्वाहिशमंद आप सब ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धंजे, राहुल धंजे, विशाल शीला और गायत्री धंजे, मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। और ये श्रोता हमारे हैं बेलर गांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, रेंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, लग्जर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। और ये पत्र हमें मिला है अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर और सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियाज ठाकुर और गुड़िया ठाकुर का। दतरंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा और दीपक वर्मा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर

ये सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत जो है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है महबूबा, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है राहुल देव बर्मन ने। आइए सुनते हैं।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए फिल्म महबूबा के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन समाप्त हुआ। रेडियो वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचार अगले कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने

0: नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।